0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: हम अपनी डेटिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? वी मेक श्योर दैट वी टेक अ डे ऑफ इन द मिडल ऑफ द वीक. हाउ एडवेंचरस. वी मेक श्योर कि हम नॉटी नहीं होते इन द बेडरूम. वी गेट नॉटी इन द किचन. सुपर एडवेंचरस. लेकिन फॉर सम पीपल एडवेंचर डज नॉट स्टॉप देयर. सो आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जिसने डिसाइड किया है कि अपनी डेटिंग लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो और उसका पार्टनर वेडिंग्स क्रैश करेंगे. अर्थात किसी स्ट्रेंज सज्जन के घर जाकर, घर नहीं एक्चुअली शादी में जाकर, फ्री का खाना, फ्री की दारू पियेंगे और वापस आ जाएंगे. माय क्वेश्चन टू हर वाज, पकड़े गए तो क्या होगा? देवर लाइक क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा शादी से बाहर फेंक देंगे. तब तक हमने कम से कम 4 चिकन मंचूरियन और 2 गोभी 65 तो खा लिए होंगे. एंड आई वाज लाइक That's pretty interesting, honestly. और अगर आपकी भी जिंदगी में you have figured out some very interesting ways of

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vieta la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पार्टी तो फेक नहीं थी, लेकिन उस पार्टी में अल्कोहल फेक थी एंड नो वन फाउंड आउट बिकॉज आप इतने चिंतित किस्म के इंसान हो.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: ऑल दिस स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, आई एम टेलिंग यू आई हैव नो कन्फेशन ऑफ माय ओन. कमरे में अगर हॉट लड़के होते तो फिर मेरी भी ऐसी जबान लड़खड़ा जाती है. बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. शी हैज अ कन्फेशन टू मेक. आई एम होपिंग आई स्टॉप स्टमरिंग एंड स्टैटरिंग. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुडे. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi, how are you doing?
2: आपको तो नोटिस हो ही रहा होगा कि मुझे एक स्ट्रेट सेंटेंस और वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है. बट आई एम होपिंग दैट आपकी
4: यकीन नहीं करोगे कि मेरी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो देखकर मेरा भी वर्ड फॉर्म होना बंद हो चुके थे.
2: प्लीज टेल मी योर स्टोरी, आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ.
4: या ट्रूली. सो आई लिव इन अ सोसाइटी ऑन द 10th फ्लोर. ओके. एंड आई वाज जस्ट हियरिंग ऐसे दो चार दिन से कि यार कोई नया एक कपल आया है ऑन 14th फ्लोर. मेरे ऐसे बिल्कुल ऐसे सामने वाले एंगल पे जहाँ पे ना दे हैवंट पुट curtains also. और कभी कभी ऐसा ना कुछ ऐसे विचित्र सी चीजें देखने को मिल जाती है ना. दे आर गेटिंग इंटीमेट एंड डोंट हैव एनी कर्टन्स एंड दे डोंट हैव एनी शर्म आल्सो अपेरेंटली. पॉइंट इज कि मैं ना ऐसी बातें सुन सुन

0: इग्नोर कर रही थी कि चल ठीक है ना यार, ओके फाइन, दे हैव देयर लाइव्स एंड ऑल दैट, कोई नहीं. सो आई वाज अ मून लवर, ओके. तो एक दिन फुल मून नाइट था, आई वाज स्टैंडिंग इन माय बालकनी एंड मैं बात भूल चुकी थी समहाउ, एंड आई वाज जस्ट सिपिंग माय टी आराम से शाम को खड़े होके, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी. सडनली मेरा ध्यान जाता है एक फ्लोर पे, तो मैंने देखा कि यार ये मेरे को अचानक सारी कहानियां याद आ गई कि अच्छा ये दो लोग जिनकी मैं बातें सुन रही थी आज मैं उनको देख रही हूँ. सो देयर इज अ कपल गेटिंग इंटीमेट, इसे मैं से पास आ चुके हैं दोनों, आई एम जस्ट सीइंग द मूवमेंट्स ऑफ द सिलुएट ऑल दैट. लेकिन जस्ट लिसन टू द कैच रोशी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सुनकर ऐसा लगेगा ओ स्टीमी एंड द सोसाइटी इज गेटिंग टर्न्ड ऑन, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी रोशी यार, मतलब कम से कम दोनों का वजन होगा 150-150 किलो. सो इफ आई डोंट वांट अ बॉडी सेम, ओके, सो बट व्हाटएवर इट इज, द फैक्ट ऑफ फैक्ट रोशी, जब दो ऐसे एकदम गोल गोल टाइम के पास में आ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया क्यों और क्या.
1: एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: माय बॉयफ्रेंड इज आस्किंग मी कि हमें अपने रिलेशनशिप में एक तीसरे इंसान को, प्रेफरेबली एक लड़की को लाना चाहिए, जस्ट टू मेक थिंग्स स्पाइसियर इन द रिलेशनशिप. आई टोटली हेट द आइडिया, लेकिन अगर मैं उसे ये कहूँगी तो ऐसा लगेगा ना कि मैं ओल्ड फैशनड हूँ एंड आई एम नॉट विद द टाइम्स. मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू अप्रोच दिस. अगर मैंने मना कर दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है दैट ही कुड लीव मी. व्हाट एम आई सपोज टू डू, प्लीज हेल्प.
1: रोशी के डीएम से
0: ये मैसेज मुझे जिसने लिख कर दिया है, उनका नाम हम अनोनिमस रखेंगे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस. स्वीट हार्ट, अगर आपके बॉयफ्रेंड ने ये कहा है दैट ही वांट्स टू स्पाइस अप योर रिलेशनशिप बाय ब्रिंगिंग अ थर्ड पर्सन, जो एक लड़की है, देन मे आई से वन थिंग. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, एंड दैट कुड नॉट जस्ट बी अबाउट दिस, इट कुड बी अबाउट एनी थिंग इन द रिलेशनशिप, अगर एक पार्टनर का बाय इन नहीं है, देन अ नो इज अ नो. लेकिन अगर आप You don't want to come across as old-fashioned, which I genuinely think there is nothing old-fashioned about it. Agar main aapki jagah hoti, I would not want to experiment with a third person in the relationship. But agar aapko discomfort ho raha hai being honest with your partner, A, there is something to talk about your relationship right there, ki aap honest kyun nahi ho pa rahe ho. And secondly, maybe you can turn around and tell him that, you know what, I'm okay with it. Lekin ek ladki ki jagah, let's get a guy. And let's see what his answer to that is. क्योंकि जो भी उसका जवाब होगा, that will let us know कि क्या वो सिर्फ एक इंसान को लाना चाहता है for expanding and experimenting in the relationship, या वो particularly एक बंदी को लेकर आना चाहता है, which is uncomfortable for you. But if we make the same thing uncomfortable for him, what will his answer be? Let me know how he reacts to that one. And अगर आपकी भी जिंदगी में मेरे इस anonymous DMer की तरह कोई बहुत ही मेजर भाषण है दैट्स अपसेटिंग यू एंड पुलिंग यू डाउन, डोंट लेट दैट हैपन. जस्ट सेंड मी योर टेक्स्ट ऑन इंस्टा या FB एंड आई प्रॉमिस आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट जस्ट एज मच एज आई डिड टू दिस वन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochIe. सो गो अहेड, सेंड मी दैट DM एंड कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: हम इस शो पर इतनी सारी खट्टी मीठी प्यारी नॉट सो प्यारी बातें करते हैं एंड टुडे थोड़ा सा रोमानी होकर आई कैन टेल यू दिस कि जिंदगी में इतने सारे रिलेशनशिप्स देखने के बाद इफ़ आई हैव कम टू वन हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ वो ये है कि लविंग समवन हार्डर विल नॉट मेक देम लव यू बैक. अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता है और आपको ये लगता है कि इफ़ यू लव देम हार्डर अपने बस से अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा तो शायद वो मजबूर हो जाएंगे टू लव यू बैक. वो शायद आपके साथ सिंपथी एक्सप्रेस कर सकते हैं, शायद आपके लिए बुरा फील करके आपको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऑफ मोहब्बत दे सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपसे मोहब्बत नहीं करता है then no matter how hard you try, no matter how much you push yourself, you will only end up hurting yourself. और अगर आप भी जिंदगी के ऐसे एक मुकाम पर हैं जहाँ पर you end up hurting yourself just because आपने किसी से इतनी मोहब्बत की है that आपने खुद का दिल तोड़ दिया, why don't you send me your number? Let's talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग हैं ROCHIE and आज थोड़ा सा रोमानी हो जाते हैं and while we're at it, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर. हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
2: किस से पूछे जा रहा है तू?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
2: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
4: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना.
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी टाइम्स ऑफ इंडिया में.

0: किसने दिया मेरा नंबर?
1: आपका नंबर आशा ने दिया, उन्होंने कहा था।
0: अरे मैं खुकड़ू को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: बहुत खराब जा रहा होता है एंड माय बॉस गिव्स मी अ रियली नाइस टेडी बेयर हग. ही इज ऑलमोस्ट लाइक माय बिग ब्रदर. मुझे ऐसे लगता है कि हाँ अब मैं अपना दिन हैंडल कर सकती हूँ. अब सोचो ऐसा ही हग मुझे एक लाइक रोमांटिक बॉयफ्रेंड स्लैश बे स्लैश क्रश दे. OMG, अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है ना हु टोटली लव्स यू एंड यू लव देम बैक, डोंट फॉरगेट टू गिव देम अ हग. एक हग तुम्हारी दुनिया बदल देती है. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर राजीव है. राजू जी,
1: हाय रोशी।
0: इतने खुश साउंड कर रहे हो, क्या आपको प्यार मिल गया है?
1: नहीं, प्यार व्यार तो नहीं पता, आपसे बात करके बहुत खुश साउंड कर रहा हूँ।
0: तो चार्मिंग होने के अलावा आप जिंदगी में क्या क्या करते हैं?
1: मैं वो करता हूँ,
0: वो जिसके
1: क्या
0: बारे में
1: बोलते
0: हम
1: हैं
0: बात नहीं कर
1: उसे,
0: सकते क्योंकि ये अश्लील.
1: ओवरथिंक।
0: ओवरथिंक. तो किस किस चीज के बारे में ओवरथिंक किया है आपने?
1: मैं उसी के लिए फोन किया आपको, मैं बताना चाहता हूँ।
0: बताइए ना.
1: तो मेरी एक कलीग है, हमारी मैक्सिमम मीटिंग रूम पे होती है, और बिकॉज वो मेरी टीम में है और हमारी दो ही लोगों की टीम है, तो बहुत ज्यादा ग्रुप मीटिंग नहीं होती, सिर्फ उसी के साथ मेरी मीटिंग होती है। बट द थिंग इज रोशी, वो मतलब मैं कैसे बोलूँ, नॉट क्वेश्चनिंग हर, बट वो काफी लाउजी कपड़े पहन के मेरे साथ वीडियो कॉल करती है, और इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि ऐसे हम सोफे पे बैठी है, थोड़ी देर में बेड पे लेट जाएगी। आई डोंट नो, मतलब इफ शी इज हिटिंग ऑन मी, और अगर नहीं भी तो मतलब मुझे तो डर लगता है ना, एट लास्ट ऑफिस प्लेस है, वर्क प्लेस है, अगर मैं इनिशिएट करूँ कुछ, दो आई डोंट वांट एनीथिंग, बट थॉट्स तो ऐसे ही आते हैं ऐसे टाइम पे आदमी को।
0: यार आई ऑनेस्टली थिंक दैट यू नो ऐसा हो सकता है दैट शी इज समबडी हु इज अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन विद हर ओन बॉडी एंड फिजिकैलिटी. तो कई लोग ऐसे कैश तरीके से ट्रीट करते हैं ना ऐसे मीटिंग्स को. तो ऐसा हो सकता है दैट शी इज़ नॉट ट्राइंग टू हिट ऑन यू एंड शी इज़ जस्ट बींग हर सेल्फ. और वो बहुत कंफर्टेबल है विद दी जूम मीटिंग्स एंड स्टफ, जो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाऊंगी. मैं कोविड के टाइम नहीं कर सकती थी तो अब क्या करूंगी. एंड ऑल्सो आई फील कि अगर ऐसा नहीं है देन मे बी शी इज ट्राइंग टू प्लांट अ कपल ऑफ आइडियाज इन योर हैड. लेकिन वट एवर द केस इज, आपकी अगर फीलिंग्स भी हैं तो नाउ इज नॉट अ गुड टाइम टू एक्सप्रेस दैम. ठीक है.
1: ठीक है,
0: सो अब आपको क्या करना है कि आपकी जो बचपन की फेल्ड ट्रिग्नोमेट्री थी, अलजेब्रा थी.
2: कुड़िए ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा,

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक हक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, लेकिन अगर तुम्हारा नाम रमेश नहीं है तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हक इज अ रियली एसेंशियल थिंग. मेरा दिन अगर

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात और सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अगर आपकी जिंदगी में द मोस्ट लॉयल थिंग टू यू इज बेली फैट, देन यू पुअर थिंग. आई डोंट ब्लेम यू, बिकॉज आजकल द क्वालिटी ऑफ लवर्स इज सो टेरेबल. आई वुड गिव देम 1 out of 10, माई डार्लिंग. अगर बेली फैट घटाना है, देन आई थिंक दो चीज़ें तो आप इमीडिएटली कर सकते हो. नंबर 1, अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, एंड नंबर 2, इंक्रीज फाइबर. ऑटोमेटिकली बेली फैट घट जाएगा. ट्रस्ट मी, आई हैव रीच दिस कंक्लूजन आफ्टर 10 years ऑफ ट्राइंग टू रिड्यूस बेली फैट. की है फाइबर इनटेक बढ़ाना और शुगर इनटेक कम करना एक्चुअली वर्क्स वंडर्स. एंड एज फार एज गेटिंग अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ इज कंसर्न, जो लॉयल होगा, इसके बारे में हमें पर्सनली कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी डार्लिंग, बिकॉज लाइक आई सेड द क्वालिटी इज सो पुअर. इट्स सो हार्ड टू पिक समवन हु इज नॉट ऑल अबाउट रेड फ्लैग्स. व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, सेंड मी योर नंबर एंड वी विल गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

Radio Mitchie, New York. It's hot.

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट। दिस इज समथिंग।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने स्कूल में साइंस भी नहीं ली थी. एंड नाउ आई नो कि मुझे ये सब क्यों पता है. क्योंकि एक नई रिसर्च के हिसाब से फॉलिंग इन लव इम्प्रूव्स योर मेमोरी. एंड गिवन हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फॉलन इन लव, मेरी मेमोरी एक एलिफेंट से भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, विच इन फैक्ट इज अ मिथ. एलिफेंट्स की मेमोरी हमसे कोई बेटर नहीं होती है. ये सब क्या सिखाते पढ़ाते रहते हैं हमें. इस सब से तो बेटर है फॉल इन लव, लर्न इन लाइफ, राइज इन लाइफ. अगर ऐसे ही टिप्स एंड टिक्स एंड फालतू के फैक्ट्स चाहिए आपको, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, हम दोस्ती करते हैं. और उसके बाद रोज आई विल हिट यू विद absolutely useless facts like this, that falling in love improves your memory. Mera naam hai Mirchi Roshi. I'm the girl in love with love, obvio, which is why I'm in love so often. Hit me up Insta ya FB par. Let's do friendship. And while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vidva la burka.
1: Mirchi, burka. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot
5: yep again
6: ओ बोले अंग्रेजी मुंडा
7: ओ करदा तेजी मुंडा
6: लगाता वोटा ईशाई।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पार्टी तो फेक नहीं थी लेकिन उस पार्टी में अल्कोहल फेक थी एंड नो वन फाउंड आउट बिकॉज आप इतने चिंतित किस्म के इंसान हो.
3: The secret box.
2: All this stuttering and stammering, I'm telling you, I have no confession of my own. कमरे में अगर हॉट लड़के होते तो फिर मेरी भी ऐसे जबान लड़खड़ा जाती है. बट एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. शी हैज अ कन्फेशन टू मेक. आई एम होपिंग आई स्टॉप स्टमरिंग एंड स्टैटरिंग. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुडे. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, हाउ आर यू डूइंग?
2: आपको तो नोटिस हो ही रहा होगा कि मुझे एक स्ट्रेट सेंटेंस और वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है. बट आई एम होपिंग दैट आपकी
4: यकीन नहीं करोगे कि मेरी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो देखकर मेरा भी वर्ड फॉर्म होना बंद हो चुके थे.
2: प्लीज टेल मी योर स्टोरी, आई फील बेटर अबाउट माय सेल्फ.
4: या ट्रूली. सो आई लिव इन अ सोसाइटी ऑन द 10th फ्लोर. ओके. एंड आई वाज जस्ट हियरिंग ऐसे दो चार दिन से कि यार कोई नया एक कपल आया है ऑन 14th फ्लोर. मेरे ऐसे बिल्कुल ऐसे सामने वाले एंगल पे जहाँ पे ना दे हैवंट पुट curtains also. और कभी कभी ऐसा ना कुछ ऐसे विचित्र सी चीजें देखने को मिल जाती है ना. दे आर गेटिंग इंटिमेट.

0: don't have any curtains and they have, don't have any sharam also apparently. So, the point is ki main na aise baat pe sun sun ke ignore kar rahi thi ki chal theek hai na yaar, okay fine, they have their lives and all that. कोई नहीं. सो आई वाज अ मून लवर. ओके, तो एक दिन ऐसा फुल मून नाइट था. आई वाज स्टैंडिंग इन माय बालकनी एंड मेरी बात भूल चुकी थी समहाउ एंड आई वाज जस्ट सिपिंग माय टी आराम से शाम को खड़े होके, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी. सडनली मेरा ध्यान जाता है एक फ्लोर पे. तो मैंने देखा कि यार ये मेरे अचानक सारी कहानियां याद आ गई कि अच्छा ये दो लोग जिनकी मैं बातें सुन रही थी आज मैं उनको देख रही हूँ. सो देयर इज अ कपल गेटिंग इंटीमेट. इसमें मैं से पास आ चुके हैं दोनों एंड आई एम जस्ट सीइंग द मूवमेंट्स ऑफ द सिलुएट ऑल दैट. लेकिन दिस इज द कैच रोशी. तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सुनकर ऐसा लगेगा वो स्टीमी एंड द सोसाइटी इज गेटिंग टर्न्ड ऑन. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी रोशी यार, मतलब कम से कम दोनों का वजन होगा 150-150 किलो. सो इफ आई डोंट वांट अ बॉडी सेम, ओके, सो बट व्हाटएवर इट इज, तो फैक्ट ऑफ फैक्ट रोशी, जब दो ऐसे एकदम गोल गोल टाइप के पास में आ रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया ये क्यों और क्या.
1: एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन. तो जब ये बहुत ही सुडोल लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तब क्या आपने अपना मुंह उस साइड किया था या आप देखते जा रहे थे?
0: मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको. दैट्स आई एम मेकिंग अ कन्फेशन कि पहले मैं समझने की कोशिश करी थी कि ये इन्होंने कुछ लपेट रखा है अपने शरीर पे. बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज अ सिलुएट. ओके, आई डोंट नो इफ दे आर वेयरिंग एनीथिंग और नॉट, पर मुझे जो प्रतिबिंब दिख रहे थे दो इतने गोर गोर, तो मुझे हंसी आने लगी थी क्या है. तो मुझे लगा मैं आपको बताऊं.
1: आपने मेरी स्टैमरिंग और स्टटरिंग को कोई हेल्प नहीं किया है. इट्स जस्ट बिकम वर्स फॉर मी. आपको रोशनी कर दूं, खुद को भी रोशनी कर दूं. ओके, श्योर, बोथ ऑफ अस गो.
2: यू've बीन रोशिफाइड.
1: फॉर योर सेक आई होप कि अगली बार जब आपको कोई कपल ऐसे इंटिमेट होते हुए दिखे तो उनका फिगर 36, 24, 36 हो ऑफ द लेडी, नॉट द मैन. एंड मैन आपको जो भी प्रेफरेंस है वो हो, ठीक है. इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई कन्फेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पता है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें सीखी एंड अ लॉट ऑफ देम केम थैंक्स टू लव. और प्यार और रिलेशनशिप्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि जिंदगी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाद में एक्सपीरियंस होगी. लाइफ इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू राइट नाउ. वो ये मोमेंट है जब आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो मोमेंट है जब आप किसी को एक टेक्स्ट भेज रहे हो और आपके मुँह पर अनविटिंगली एक स्माइल है, वो मोमेंट है जब आपने एक सनसेट देखा एंड यू थॉट ऑफ टेकिंग अ पिक्चर एंड सेंडिंग इट टू समवन हु इज़ रियली स्पेशल फॉर यू, वो मोमेंट है व्हेन योर हार्ट वाज ब्रेकिंग लेकिन आपने उसे पॉज किया बिकॉज आल्सो योर बेस्ट फ्रेंड्स हार्ट वाज ब्रेकिंग एंड दैट समहाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग वेरी इमोशनल अबाउट इट, जिंदगी बड़े मोमेंट्स और बड़े माइलस्टोन्स नहीं है. जिंदगी तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं दैट एक्चुअली मेक अप द कोलाज ऑफ द बिग फोटो एल्बम जिसे हम जिंदगी कहते हैं. और अगर आपके लिए भी इट्स दी स्मॉल थिंग्स दैट काउंट, आई थिंक वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और एक चीज़ जो मैं कहती आई हूँ और कहती रहूँगी वो ये है कि यू गॉट इट, जिसके पास लव है उसके पास सब है एंड आई लव यू लोड्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
4: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल, जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। ए आर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है। और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं। और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं। और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुंचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। So, I don't think, I don't miss anything.
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या, वो दब गए, they were forgotten. इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है। एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान, दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
1: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
1: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
1: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
1: 33501।
2: अच्छा
1: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
1: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
3: हाय।
1: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
3: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
1: धोबी से
3: पूछ लीजिए।
1: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
1: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
4: ये बेल जा रही है।
1: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
1: आपके
2: हो
1: पास
2: क्या है?
1: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501।
2: हेलो,
1: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
1: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है।
1: ये

0: एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
1: विके। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया। 335
2: किसने दिया मेरा नंबर?
1: आपका नंबर आशा ने दिया, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: नंबर 7।
6: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दा ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे, दैट्स इट, दैट्स हिज सब्सक्राइबर काउंट। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। द सॉन्ग इज इन सॉफ्ट, इट्स नॉट जेंटल, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा. अगेन नंबर टू दिस वीक. माय नेम इज सुरेन सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट. तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं. बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है. वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म. एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं.
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है. जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ. एंड देन और फिर एक और कहानी आती है. December 5, 2025 धुरंधर. March 19, 2026 धुरंधर 2. रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं. वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो. ऑर्गेनिक पीआर? Again, absolutely zero. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज. 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर. करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ. एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट. They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

अक्सर सोलो ट्रैवल करते हुए जब मैं कपल्स को साथ में घूमते हुए देखती हूँ तो दिल को बहलाने को गालिब यही सोच लेती हूँ कि प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, आजादी ज्यादा प्यारी है ना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ये जो इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, आपके दिल और दिमाग के साथ खेलते हैं, क्योंकि फिर मैं कपल्स को जब स्वीट नथिंग्स में इंडल्ज होते हुए देखती हूँ, खूबसूरत नजारों को साथ में देखते हुए देखती हूँ, कभी कभी लगता है कि हाँ कंपेनियनशिप होनी चाहिए। फिर दिल में ख्याल आता है वो जो गाना हम अभी सुनने वाले हैं। बाय द वे ये गाना जो कंपोज किया है SD बर्मन साहब ने, इसका जो आइकॉनिक माउथ ऑर्गन वाला म्यूजिक है वो माउथ ऑर्गन प्ले किया था RD बर्मन ने। आई थिंक यू गेस्ट इट राइट, दिस आइकॉनिक सॉन्ग राइट हियर ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल।

0: मजाक चल रहा है सर। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
1: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

भाई वैसे तो लाइफ में इस गाने का वीडियो देखने को हमको बहुत देर बाद मिला, ये जॉनी मेरा नाम का जो गाना है हुस्न के लाखों रंग, क्योंकि छोटे होते इस तरह के गाने आपको मतलब दिखाए नहीं जाते थे ना, चैनल चेंज हो जाता था कि यू वर नॉट अलाउड टू वॉच सच सॉन्ग्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब भी देखा और पता चला कि इसमें जो डांस कर रही हैं पद्मा खन्ना जी, शी इज द सेम एक्टर जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में कैकई का रोल किया था, तो माई माइंड वॉज ब्लोन। क्या रेंज होती थी पुराने एक्टर्स की भाई। एंड सेम विद अरुणा ईरानी जी, आई थिंक उनको 90s में हमने देखा दिल तो पागल है फिल्म में, वो माधुरी दीक्षित की टीचर का रोल प्ले करती हैं, डांस टीचर का रोल। देन बेटा फिल्म में उनका जिस तरह का रोल था। एंड देन फिर कारवां के गानों में जब उनको देखा तो लगा कि ओ माय गॉड ये क्या टेरिफिक बंदी है। वैसे बोथ पद्मा खन्ना जी एंड अरुणा ईरानी जी क्लासिकल डांस में वेल ट्रेंड रही हैं। कारवां का ये अमेजिंग गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pranichi with Charu, only on

भाई ये भली भली भोली भोली जो सूरतें हैं ना, यही खेल कर जाती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो क्या गाना था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक शेर भी है सदा अम्बालवी का, हैं जितनी खूबसूरत उतनी ही हैं बेवफा, देखो बस दूर से ही इन हसीनों की अदा देखो। वैसे बंदियों को हसीनों को क्यों हमेशा ऐसे बेवफा कहा जाता है यार, बंदे भी होते हैं। तो इसको हम थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, हैं जितने खूबसूरत उतने ही हैं बेवफा, देखो बस दूर से ही इन आशिकों की आशिकी देखो। और फिलहाल हम एक आशिक के दिल का दर्द यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन।

मैं ना वो गाने सोच रही थी जिनमें पहला लफ्ज आता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ज्यादातर मेरे जहन में 90s के गाने आ रहे थे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, हम आपके हैं कौन का, या जो जीता वही सिकंदर का, पहला नशा पहला खुमार, या साजन फिल्म का था पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया, या संघर्ष फिल्म का पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, फिर वो MP3 का गाना था मेरा पहला पहला प्यार है ये, और एक कुमार सानू का भी था पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा पहली ये मुलाकात है, एक और था पहले प्यार का पहला गम पहली बार है आंखें नम। तो ऐसे सब 90s के गाने ध्यान में आ रहे थे, बहुत पुराने गाने ऐसे कोई खास नहीं आ रहे थे। एक दो जो ध्यान में आए, एक तो लेके पहला पहला प्यार, या आज उनसे पहली मुलाकात होगी, या फिर ये वाला जो हम सुनने वाले हैं 1979 की फिल्म और कौन का ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

आपको पता है 1982 की फिल्म शक्ति में गाने रखे जाएं या नहीं, इस पर बहुत सोच विचार किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि राइटर सलीम जावेद का ये मानना था कि इसमें जो मेन किरदार था अमिताभ बच्चन साहब का, वो इतना कोल्ड एंड क्वाइट टाइप का बंदा दिखाया गया था। दिलीप कुमार साहब उनके फादर प्ले करते हैं, उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप दिखाया गया था वो एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप था। तो ऐसा बंदा जो ऐसे नाराज सा है सबसे, वो गाने थोड़ी ना गाता फिरेगा स्क्रीन पे, ऐसा सलीम जावेद राइटर्स का मानना था। लेकिन डायरेक्टर साहब रमेश सिप्पी, उनको ऐसा लगा कि कुछ गाने होने चाहिए, फिर एंड टाइम पे गाने जो है बनाए गए। और इसका वो जो एक गाना है, क्या सुपरहिट एवरग्रीन गाना है वो, जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वैसे ये जो इसका एक और गाना हम सुनने वाले हैं, ये भी कोई कम नहीं है। क्या गाया है लता जी ने, क्या लिखा है बख्शी साहब ने, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?

0: 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
3: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
5: थैंक यू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: पुरानी जींस चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बख्शी साहब का गाना हमने सुना जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और जो अगला गाना ये भी बख्शी साहब का लिखा हुआ है, सनी फिल्म का गाना, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। अहदे वफा मतलब वफा करने वाले, वादा निभाने वाले। इस पर एक शेर भी था, एक बेवफा से अहदे वफा करके आए हैं, अब आके सोचते हैं ये क्या करके आए हैं। क्या आप भी ऐसा करके आए हैं? मत करो बेवफा लोगों से वफा। इसी गाने की आगे लाइंस हैं, ये जो सनी फिल्म का गाना है, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

आपको पता है 1981 की फिल्म लव स्टोरी जब रिलीज हुई थी, जो कुमार गौरव और विजेता पंडित की डेब्यू फिल्म थी, तब विजेता पंडित वॉज नॉट इवन 14 ईयर ओल्ड। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब ये पुरानी फिल्मों में चाइल्ड लेबर कराया जाता था। वो 8th क्लास में थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा था कि माला सिन्हा चाहती थी कि उनकी डॉटर प्रतिभा सिन्हा इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ लॉन्च हो, पर राजेंद्र कुमार जी ने मना कर दिया या बात नहीं बनी, क्योंकि प्रतिभा सिन्हा तब सिर्फ 12 साल की थी। मतलब ये फिल्मी सितारों के जो बच्चे, इनके मतलब पैदा होते से यही सपना हो जाता होगा ना, हीरो हीरोइन बनने का। खैर सपनों का क्या है, सपने तो सभी देखते हैं, किसी के पूरे हो जाते हैं, किसी के टूट जाते हैं, होता है चलता है दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, इट्स अ म्यूजिकल ब्रेक। गाना सुनेंगे हम लव स्टोरी फिल्म का ही। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अभिमान फिल्म का वो जो सुंदर सा गाना है ना, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे तो उसके सारे गाने सुंदर हैं, लेकिन वो जो गाना है मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, जो गाया है लता मंगेशकर जी एंड मनहर उदास जी ने। तो ये ओरिजिनली ना लता जी के साथ मुकेश जी गाने वाले थे गाना, लेकिन मनहर जी ने एक डेमो वर्जन रिकॉर्ड किया और ये डेमो वर्जन सबको इतना पसंद आया तो यही डिसाइड हुआ कि उन्हीं की आवाज रखी जाएगी। तो मजरू साहब का लिखा हुआ, SD बर्मन साहब का कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन.

उफ उफ उफ उफ इंतजार, क्या क्या लिख गए इंतजार पे लिखने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गालिब ने कहा है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। विसाले यार मतलब यार से मिलना। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। सीमाब अकबर आबादी ने कहा है, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। मुनीर नियाजी साहब ने लिखा है, ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है मैं इंतजार में हूँ। चलिए इंतजार पे ही हसन कमल साहब की लिखी हुई ये खूबसूरत गजल सुनते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
6: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
4: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
6: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
4: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
6: हाँ जी,
4: हाँ बोलिए।
6: 33501।
4: अच्छा
6: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
4: हेलो,
6: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
7: हाय।
6: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
7: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
6: धोबी से
7: पूछ लीजिए।
6: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
4: हेलो
6: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
8: ये बेल जा रही है।
6: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
4: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
6: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है।
4: हेलो
6: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
4: किस से पूछे जा रहे हैं?
6: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
4: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
6: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
4: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
6: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
9: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
4: किसने दिया मेरा नंबर?
9: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
4: अरे मैं खुकड़ू को।
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

सुंदर गाना भूली बिसरी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना तो देखो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी ऐसी भूली बिसरी फिल्म का है। सीरियसली मतलब मुझे ऐसे लगता था ये गाना किसी राजेंद्र कुमार माला सिन्हा टाइप की फिल्म होगी उसका है। बट दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू अ मूवी कॉल्ड वापस, 1969 की ये मूवी है जिसमें अलका अजय नाम के एक्टर्स थे। ऑनेस्टली मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला। बट ये गाना कितना पॉपुलर है, ये फ्रेज कितना पॉपुलर है, एक तेरा साथ कई बार ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, 1137 एक तेरा साथ। मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये गाना लिखा हुआ था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन एंड ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली सॉन्ग बाय लता जी एंड रफी साहब। और अगला गाना अगेन अ ब्यूटीफुल डुएट बाय लता जी एंड रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

ओ भाई, मैंने 1968 की फिल्म दो कलियां वापस से देखी और मजा आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और सबसे मजेदार प्यारी उसमें नीतू सिंह जी एज चाइल्ड एक्टर, बेबी सोनिया नाम से वो काम करती थी ना एज अ चाइल्ड एक्टर, तो उसमें वो एक दो जुड़वा बहनों का रोल प्ले करती है जो बचपन में अलग हो जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। फिर बड़ी होकर जब ये दोनों मिलती हैं तो रोल स्विच कर लेती हैं, मम्मी वाली पापा के घर चले जाती है, पापा वाली मम्मी के घर चले जाती है ताकि इन दोनों के पेरेंट्स वापस मिल जाएं। अभी एक्चुअली एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, 1965 की एक तमिल फिल्म थी विच वॉज बेस्ड ऑन 1961 की एक अमेरिकन फिल्म द पेरेंट ट्रैप, विच अगेन 1949 के एक जर्मन नॉवल लीसा एंड लॉटी पर बेस्ड थी। ये नॉवल लिखा था एरिक कास्नर ने। खैर, बैक टू दो कलियां, इस फिल्म का ये गाना सुनेंगे, संग बाय लता जी एंड रफी साहब, कंपोज्ड बाय रवि जी एंड रिटन बाय साहिल लुधियानवी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
2: only on Radio मिर्ची it's hot
0: पुरानी जीन्स विद चारों only on

आपको पता है 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने, जिसमें देवानंद और नूतन लीड रोल्स में थे, उसमें संजय खान की फर्स्ट वाइफ जरीन खान जो थी, उन्होंने भी एक छोटा सा रोल किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, जरीन खान, जायद खान और सुजैन खान इनकी मम्मा। एक्चुअली वो एक मॉडल थी, फिर बाद में वो इंटीरियर डिजाइनर भी बनी, लेकिन उन्होंने एक दो फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें से एक ये थी तेरे घर के सामने। इसमें उन्होंने जेनी नाम का एक रोल प्ले किया था, बट एक्टिंग उनको ज्यादा रास नहीं आई। हर किसी को एक्टर नहीं बनना होता है, और अभी यहाँ पे आप बात बना दीजिए। मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और सुनते हैं खूबसूरत गाना।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Cabana!
0: ¡Murga, murga! ¡La vida es para la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए
3: सर, हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
4: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ सर, मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

तेरे, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Murga, murga! ¡La fiesta la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Hola?
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो
3: दिस
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू दिस
3: कौन बोल रहा है
4: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
3: क्या मजाक चल रही है
4: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
5: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
3: कू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दुनिया में चल रही अनसर्टेनिटी के बीच अपने माइंड और माइंडसेट को कैसे प्रोटेक्ट करें, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मिस्टर श्रेया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ खबरें पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया में क्या ही हो रहा है। जैसे फिलहाल मिडल ईस्ट में वॉर जो छिड़ा हुआ है, टाइम्स थोड़े अनसर्टेन हैं, उसके पहले बहुत सारी और भी बुरी खबरें आती हैं। रशिया का वॉर 4 साल से चल रहा है, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, न्यूज़ पर जाएंगे, वही चीज़ आप बार बार देख रहे हैं। एक है कि हम उसके बीच में नहीं है इस वक्त, हम इस न्यूज को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वॉर तो हो रहा है
4: जी।
3: मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने आप को इससे दूर कैसे रखूं?
4: मुझे लगता है इस समय पर इससे दूर रखना तो शायद इम्पॉसिबल ही हो जाता है, क्योंकि जब चारों तरफ वही चल रहा है और इस समय पर इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है
3: जी,
4: तो दूर तो नहीं रख सकते, लेकिन लिमिट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वही चीज अब्सॉर्ब करते जाते हैं तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही है। ये ऐसा है कि आप जो खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर पड़ना ही है। आप ये नहीं सोच सकते कि जंक खाते रहें और बॉडी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है, अगर उसके अंदर फियर है, नेगेटिविटी है, हेट्रेड है, उसके अंदर ये सब इमोशन है, और अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इट विल टेक अ टोल ऑन यू। तो एक है कि इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है, बट इन्फॉर्म्ड होना और सारा दिन उसको कंज्यूम करना उसमें फर्क है। इन्फॉर्म तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस टाइम से गुजर रहे हैं, हम कुछ भी अगर देखे पढ़े सुने नहीं तो भी हम इन्फॉर्म्ड होते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है तो आई पर्सनली फील जब हम देखते हैं तो हम उस चीज का इमोशन कंज्यूम करते हैं। हम इमेजेस देख रहे हैं, हम वो म्यूजिक सुन रहे हैं, समवेयर समबडी वाज सेइंग कि इतने सायरन तो वहां भी नहीं बज रहे होते जितने न्यूज चैनल में बज रहे हैं। मतलब वो चीज आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, तो देखने के बजाय अगर हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वट एवर इज इम्पोर्टेंट, जितना हमारे लिए जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन आपने कंज्यूम करी, इमोशन को साइड में रख दिया, सो यू आर एबल टू रिमेन स्टेबल येट इन्फॉर्म्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: शुभ चिंतन और चिंता में क्या फर्क है, आइए इस अंतर को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: उसमें अब दूसरा जो मैं जानना चाहता हूँ, जब ये वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इतनी सारी चीजें चल रही है, बाकी जगहों पर भी है, एक तो है कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन कम कंज्यूम करूँ और इमोशन हटा के देखूँ, पढ़ने की ज्यादा कोशिश करूँ। दूसरा है कि मेरे शायद कोई परिवार के लोग या दोस्त वगैरह वहां फंसे हुए हैं इस वक्त, अब चिंता तो होगी ही उनके बारे में। मैं न्यूज चाहे कंज्यूम करूं नहीं करूं, ये तो जानना पड़ेगा कि वहां पे क्या चल रहा है इस वक्त, तो कैसे बाहर आ सकते हैं, वो किस स्थिति में है, वो जीवित भी है या नहीं, तो इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये तो चलेगा दिमाग में।
4: दिमाग में चलेगा, पर दिमाग में क्या चलाना है उतनी चॉइस है। अगर आपके सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है तो ट्रिगर का काम करे, आपके दिमाग में चलेगा। अब आपने कहा चिंता तो होगी, अब चिंता करना है या शुभ चिंतन करना है
3: जी,
4: उस दोनों के अंदर थोड़ा ही फर्क होता है ना। जैसे हम कहते हैं रिएक्ट करना है या रिस्पोंड करना है
3: जी।
4: फर्क थोड़ा है, इम्पैक्ट जमीन आसमान का, मींस व्हिच मींस आपके मन में जो आप हर थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो आप उनके लिए जो आपके अपने हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो सेफ रहे, आप उनको नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो आप भी इधर इधर डिप्लीट हो रहे हैं और आपका वाइब्रेशन उनको भी डिप्लीट करेगा
3: जी।
4: और आप फोन पर भी बात करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स हमारे थोड़े से ठीक होंगे, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा,
3: लेकिन मन में जो चल रहा है
4: उनको भी आप क्या कहेंगे, चिंता नहीं करो,
3: राइट,
4: सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और अपने लिए कहेंगे चिंता होना
3: तो लाजमी है,
4: लाजमी है, नेचुरल है, तो जो नेचुरल है तो फिर उनको क्यों कह रहे हैं चिंता नहीं करो, क्योंकि आप समझते हैं ना चिंता राइट नहीं है। तो इसलिए वो मोमेंट होता है उस समय शुभ चिंतन करे, नहीं सब ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा, एंड एवरीबडी अराउंड इज मेकिंग ऑल द एफर्ट टू हेल्प ना, उसके प्रति भी तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हर कंट्री, उसकी लीडरशिप, उसकी गवर्नमेंट, हर एक कितना आपको सपोर्ट कर रही है, आप ग्रेटिट्यूड भी फील कर सकते हैं और नहीं तो आप नेगेटिविटी भी फील कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलवाणीं वाराणसीपुरपतिं।

0: Mirchi Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब सेफ एनवायरनमेंट भी हमें अनसेफ लगने लगे तब उससे डील करने का एक तरीका परमात्मा को याद करना भी हो सकता है। आइए इस बात पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप ये बात कह रही हैं, जब आप सोचते हैं तो ये सही लगता है कि भैया जब इतनी अनसर्टेनिटी है, वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है, तो इंटेंशन अपना प्योर रखो, अपना ध्यान रखो, सामने वाले को भी शुभ चिंतन भेजो, चिंता मत करो। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, जब एक ऐसा एटमॉस्फेयर में हम पले बड़े होते हैं जो बहुत सेफ होता है, पता है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे दुबई में मेरे कुछ दोस्त हैं, सालों से रह रहे हैं वहाँ पे। दुबई सपोज टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, कहते हैं कि सब कुछ वहाँ बहुत सही है, बहुत सालों से कुछ नहीं हुआ। वहां पे भी जब बॉम्बिंग हुई, एयरपोर्ट पे कुछ ड्रोन्स गिरे, तो लोगों को लगा कि इसको कभी हमने फेस नहीं किया, अब किसी और कारण से, हमारी गलती भी नहीं है, यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है। जो प्रतिक्रिया हो वो कैसी हो या क्या करें जो हम अपने मन को या अपने आसपास के लोगों को शांत कर सके।
4: इसलिए परमात्मा हमेशा तीन शब्द कहता है, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। बहुत काल विच मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम,
3: फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा,
4: मतलब जब भी कोई सीन आएंगे अनएक्सपेक्टेड और अचानक होती है।
3: अच्छा,
4: कोई भी चैलेंज जीवन में, ये ग्लोबल लेवल पर है, पर्सनल लेवल में भी कोई बात बताकर थोड़ी ना आती है,
3: अचानक ही आती है।
4: मैं कहते हम घर से ऐसे निकले थे, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई लॉस हो गया, अचानक होता है बहुत कुछ, पर्सनल लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पे भी। उसके लिए जरूरी होता है एवर रेडी रहना। आपने लंबे समय से अपनी कंट्री को ग्लोबली भी उस चीज को उस लेवल तक नहीं लाया होगा कि आज आप अपने को डिफेंड कर सके या प्रोटेक्ट कर सके, उस दिन नहीं कुछ कर पाते। एक है मन है आपका स्टेबल है, एक है मन है आपका डिस्टर्ब्ड है। बाहर की कोई परिस्थिति थी, उसका इम्पैक्ट स्वस्थिति पर पड़ा। होना क्या चाहिए, स्वस्थिति से आप परिस्थिति को बदल सके। बट अगेन दैट हैपेंस लाइक आई सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने बहुत लंबा समय मेडिटेशन की प्रैक्टिस से अपने मन को कंट्रोल करने की आदत डाली होगी, उस मोमेंट में आपको पता है क्या सोचना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बुरे समय में प्रार्थना हमें अंदर से शक्ति देती है। आइए प्रार्थना की ताकत को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, सोशल मीडिया के जो न्यूज साइकिल है या टेलीविजन का न्यूज साइकिल, जहां इतने सारे सायरन्स बज रहे हैं, वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए शायद हर कल्चर में प्रार्थना जो है उसका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शायद प्रार्थना आपको वो शक्ति देता है और वहां आपके दिमाग को भेजता है जहां पे इंटेंशन ज्यादा जरूरी आ जाता है। तो इस समय प्रार्थना की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और क्यों?
4: एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक बहुत सिंपल सी रिसर्च की थी कि जहां पर कुछ पेशेंट्स थे, 40 पेशेंट्स और 40 ऐसे, और कुछ लोगों को बोला गया इन 40 पेशेंट्स के लिए क्रिटिकली इल है, आप प्रे करें, और दूसरे 40 पेशेंट्स के लिए कोई प्रे नहीं कर रहा था, एंड दैट प्रेइंग वाज आल्सो हैपनिंग एट अ वेरी डिस्टेंस, माना वो भी कोई 100-200 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रुप उनके लिए प्रे कर रहा था। और फिर रिजल्ट में ये देखा गया कि जिस ग्रुप के लिए प्रे किया जा रहा था उसकी हीलिंग बहुत फास्ट थी, जिसके लिए नहीं किया जा रहा था वो हील कर रहे थे बट हीलिंग बहुत स्लो थी। आप जब भगवान को याद कर रहे हैं, आपसे एक ऊर्जा निकल रही है और वो ऊर्जा वहां तक पहुंचती है, क्योंकि ऊर्जा के लिए टाइम का, डिस्टेंस का, फिजिकल कोई बैरियर नहीं होता, इट इज वाइब्रेशन जो ट्रैवल करता है। सो 100% जब हम प्रे करते हैं,

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: धार्मिक एक्ट या स्पिरिचुअल एक्शन क्या होता है, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: प्रेयर जो है वो एक धार्मिक एक्ट नहीं है, वो एक्चुअली वाइब्रेशन अच्छे भेजने का और मन को शांत करने का एक तरीका है।
4: धार्मिक एक्ट क्या होता है?
3: ज्यादातर बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है जिनसे मैं बात करता हूँ, उनको लगता है कि अरे ये बोला गया है, हमारे गुरु ने बोला है, हमारे भगवान के लिए हम प्रे कर रहे हैं। एक्चुअली हम प्रे अपने आप के लिए कर रहे होते हैं।
4: नहीं, धार्मिक हो स्पिरिचुअल हो ये तो वर्ड्स हैं, लेकिन प्रेयर है क्या? आई एम कनेक्टिंग टू अ हायर बींग।
3: यस,
4: प्रेयर किसी भी रूप में आप प्रेयर करें, बट यू कनेक्टिंग टू अ हायर बींग, अ सुप्रीम बींग, somebody who's ocean of love, somebody who's an ocean of peace. आप उससे कनेक्ट करके अपने को empower कर रहे हैं कि आपका जो vibration world के अंदर फैल रहा है वो औरों को heal करे, वो चिंता नहीं फैलाए, वो और डर नहीं फैलाए। So you're raising your consciousness. So when you're praying, पहले तो you're taking care of yourself. नहीं तो उस सारी energy का impact आपके ऊपर भी पड़ जाता है। हम अगर किसी को याद करते हैं और अगर हमें कभी जीवन में उससे दुख मिला है, तो जैसे हम उसको याद करते हैं, हमारा मन उसके मन से जुड़ता है, तो हम दुख एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। आपका मन जिसके मन से जुड़ता है वो एनर्जी आप फील करना शुरू कर देते
3: हैं।
4: कभी आप उसको याद करें जिससे बहुत सुख मिला है,
3: तो आप इमीडिएटली अच्छी
4: स्टार्ट फीलिंग गुड।
3: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 101.3।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर राज कोलकाता से लिखते हैं, हेलो रिचार्ज मंत्रा टीम, मेरा सवाल है, इस ग्रीड से भरी दुनिया में एक प्योर स्पिरिचुअल और पायस जिंदगी जीने का राज क्या है?
3: समझ। अगर आपको समझ मिल जाती है कि मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, तो फिर भले सब भी गलत कर रहे हो, आप नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आप करेंगे उससे आपकी डेस्टिनी बनेगी, जो वो करेंगे उससे उनकी डेस्टिनी बनेगी। तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में न आकर के राइट क्या है, भगवान क्या कहता है, उस मार्ग पर
2: चलेंगे। सही बात है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर शौर्य लिखते हैं कि मुझे वो पसंद है लेकिन उसकी तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। हमारी बात होती है काफी, पर 7 दिनों से खामोशी का दौर चल रहा है, मैं क्या करूं?
3: ज्यादा तो वो ही जान सकते हैं कि वो क्यों सामने वाला खामोश है। पर मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में बात करने में, कम्युनिकेट करने में इतना हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आपको डर लगता है कि मैंने बात करी और शायद मुझे पता चला कि वो मुझे नहीं पसंद करती है। आई थिंक उस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि इट इज ओके। ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को लाइक करेंगे तो उसको भी हमें लाइक करना जरूरी है।
2: बिल्कुल नहीं, हाँ।
3: ये चीज की तैयारी मन में कोई करता नहीं है। मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं आगे भी जीवन में उसको पसंद करता रहूंगा, ये मेरी चॉइस है। अगर वो मुझे नहीं पसंद करते, मैं तो भी उनके लिए अच्छा सोचता हूँ कि फिर उसको कोई ऐसा मिल जाए जिसको वो पसंद करती है और मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे पसंद करता है।
2: सही बात।
3: थोड़ा सा हमें ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है इसके अंदर, पर हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हमें डर लगता रहता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो वाइब्रेशन सामने वाले को सफोकेट करता है। वो जितना हमारे साथ एंजॉय कर रहे होते हैं उतना भी नहीं कर पाते। फिर उनको लगता है कैसे भी हम इस रिश्ते से बाहर निकले। ये एक कारण हो सकता है, बाकी तो वो बात करेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे।
2: तो बात करिए और एकदम सहजता से बात करिए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए और उन पे इतना प्रेशर मत डालिए कि वो शायद आपसे दूर हो जाएं।
3: जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम प्यार करते हैं वहाँ फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए
2: कि वो भी प्यार करे।
3: हाँ, ये सवाल ठीक नहीं है। आई लव यू, अभी हाउ मच यू लव मी, ये नहीं होता है।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर शिवानंद नारगंड से लिखते हैं और उनका सवाल है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य पर काबू सिर्फ ध्यान से काम कर सकता है या अलग अलग काम करने से मन को काबू हम कर सकते हैं, इसमें कौन सा सरल और सुंदर मार्ग है?
3: मन को पावरफुल बनाने के बहुत तरीके हैं, उसमें मेडिटेशन सबसे पावरफुल टूल है।
2: जी,
3: ये सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने मन को दिशा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए।
2: हाँ।
3: अगर वो एक पंख से उड़ता है तो उड़ तो सकता है लेकिन थोड़ी हाइट तक उड़ करके गिर जाता
2: जी।
3: है। ऐसे ही मेडिटेशन के अंदर नॉलेज और मेडिटेशन, ये दो पंख होते हैं।
2: अच्छा।
3: क्योंकि हमने जैसे कई बार बात करी है कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है
2: तो फिर आप करेंगे कैसे,
3: आप कैसे अपने अपने थॉट्स को कैसे दिशा देंगे। समझो, मुझे ये थॉट आ रहा है अंदर में कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी बीमारी है, पता नहीं डॉक्टर, दिस इज माई नेगेटिव थिंकिंग। अब मेरे पास कुछ तो नॉलेज चाहिए ना जो मैं अपने मन को ट्रांसफॉर्म करके कह सकूं कि नहीं, बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं भी इंटरव्यू क्लियर हुआ तो एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। या बीमारी है तो शरीर को है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है, अच्छा इलाज लेंगे, अच्छा डॉक्टर लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए और स्टेबल फील करने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए। ज्ञान बोलो, नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, सत्संग बोलो, सत्य का संग। कुछ हम अच्छा सुनते हैं तो हम अच्छा सोच पाते हैं, तो ये दो चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, सेवा भी आपके मन को बहुत एम्पावर करती है। आप किसी की सेवा करते हैं उससे दुआ मिलती है।
2: हाँ।
3: वो प्योर एनर्जी भी आपके मन को शांत करती है। तो कोई भी ऐसी एक हैबिट जो आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग की कोई सेवा करते हैं, किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई मदद करते हैं, वो दुआ भी आपके पाप को काटती है, पुण्य को जमा करती है, आपके मन की हीलिंग करती है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello to you from your overexcited, coffee-loving, music-playing RJ. सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, नाम है प्रिसिला. कसम से ये मेरा डेफिनेशन है. आज का मूड मेरा सिंपल है, कॉफी स्ट्रांग है, वाईफाई स्टेबल है, बॉस का मूड अच्छा है. होपफुली ना कोई ईमेल करे ना कोई मैसेज करे, बस मुझे मेरी जिंदगी आज के लिए जीने दे. क्योंकि हम सब इसी तरह कार्डियो करते हैं, एक हाथ में बेगल, दूसरे में कटिंग चाय और दिमाग में ढेर सारी यार इंडिया में इस टाइम पर क्या चल रहा होगा वाली मेमोरीज. तो अभी फिलहाल अगर तुम ट्रैफिक में अटके हुए हो या जूम कॉल पर भटके हुए हो, साथ में मुझे रखो. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और जाकर मुझे जल्दी से फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल name, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp and mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647 2 4. Mirchi Mornings has just begun. Very good morning to you. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na wird bala burka.
1: Milci burka. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए.
3: 33501.
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
4: हाय.
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए.
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
5: ये बेल जा रही है.
3: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
3: आपके पास पासवर्ड होगा?
1: 33501.
3: हाँ सर, 33501. हेलो. हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
1: किस से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपको.
1: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये. एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
3: है. आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी. टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया, उन्होंने कहा था.
1: अरे मैं खुकड़ू को.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब यहाँ पर हम चलने वाले हमारी इमेजिनरी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में. 1607 में जेम्सटाउन वर्जीनिया बिकेम अमेरिकाज फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट. 1804 में लुइस एंड क्लार्क बिगैन एक्सप्लोरिंग द अमेरिकन वेस्ट. 1948 में इजराइल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड बूम, वर्ल्ड हिस्ट्री चेंज्ड ओवरनाइट. 1955 में द वॉर्सो पैक्ट वाज साइंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. 1973 में नासा लॉन्च्ड स्काईलैब, अमेरिकाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन. और यहीं से इंडियन पेरेंट्स का सपना कि हमारा बेटा साइंटिस्ट बनेगा शुरू हुआ. 1992 में इंडिया ऑफिशियली बैंड द LTTE, मेकिंग अ मेजर पॉलिटिकल डिसीजन बैक होम. एंड नाउ कम से हाई ऑन इंस्टा एंड एक्स एट मिर्ची प्रिस, दैट्स माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is your girl Priscilla with you and you're listening to Mirchi Mornings. To suno, the Cannes 2026 mein our very own Alia Bhatt made a glam entry on the red carpet. Lekin social media being social media, ek video went viral claiming photographers were too busy clicking someone else and ignored her completely. Ek bande ne to ye bhi likh diya, who is she waving at? Internet pe matlab, ek second ke andar fashion critic, body language expert aur FBI analyst sab ban jate hain log. और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि एक्टर अली गोनी जंप्ड इन सपोर्टिंग आलिया एंड बेसिकली सेड हेलो शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज शो सम रिस्पेक्ट. वैसे आलिया वाज आल्सो स्पॉटेड चैटिंग विद फॉर्मूला वन स्टार कार्लोस साइंस जूनियर. यस, स्पीड मीट्स स्पार्कल. द इंटरनेट कॉल्ड इट रैंडम बट आइकॉनिक कॉन्वर्सेशन एंड ऑनेस्टली इट लुक लाइक बॉलीवुड एंड फॉर्मूला वन एक्सीडेंटली मैच्ड ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव डेटिंग ऐप. ऑल्सो कैन वी अप्रिशिएट हाउ दिस इज रिएक्ट टू सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस. एक हैंडशेक हुआ नहीं कि shaadi.com टाइप की फीलिंग आ जाती है. वैसे फिलहाल तुम मुझसे हैंडशेक कर सकते हो. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल वही है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड नाउ इट्स टाइम दैट वी चेक आवर वेदर अपडेट। तो अभी फिलहाल टेम्परेचर इज सिटिंग टाइट एट 53 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स अ बिट क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है तापमान 54 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। एंड अराउंड 1 PM आफ्टरनून में स्काइज विल टर्न पार्टली क्लाउडी, सो बेसिकली सन बोलेगा हेलो गाइज, मैं भी अटेंडेंस लगाने आया था। टुडेज हाई विल गो अप टू 67 डिग्रीज फारेनहाइट एंड लो विल गो एज डाउन 53 डिग्रीज फारेनहाइट, विच मीन्स मॉर्निंग में हुडी की जरूरत पड़ने वाली है। यस्टरडे द टेम्परेचर टच्ड 74 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन टुडे इट्स गोइंग टू बी कूलर, मतलब वेदर आज थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ है। गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जीरो रेन इज एक्सपेक्टेड। सिर्फ 1 mm की रेन हुई थी लास्ट 24 आवर्स में, सो योर हेयर, योर स्नीकर्स एंड योर फ्रेशली ब्लो ड्राइड बैंग्स आर ऑफिशियली सेफ। ऑल्सो आज भी लेयर के प्लेयर बनो, ढेर सारा पानी पियो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड साथ साथ में मिर्ची के वाइब को कैरी करो। मुझे यानी कि प्रिसिला को फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल टाइम है मिर्ची दार बैंगर्स का, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there. Welcome to the second hour of Mirchi Mornings. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब बारी आ चुकी है. अब नंबर पर सिंगर डुआ लिपा हैज रिपोर्टेडली सूड सैमसंग फॉर अ वॉपिंग $15 million. यस, क्लेमिंग हर इमेज वॉज यूज टू प्रमोट टीवीज विदाउट परमिशन. सैमसंग रिस्पॉन्डेड सेइंग थर्ड पार्टी पार्टनर्स अशोर्ड देम दे हैड द राइट्स. एंड नंबर टू पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्लेम्ड ही सीक्रेटली मेट यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद ड्यूरिंग द ऑनगोइंग रीजनल टेंशंस इन्वॉल्विंग ईरान. यूएई डिनाइड द मीटिंग सून आफ्टर while Iran reportedly shared flight path details as proof. And number three, per a very sad news coming in from India, severe storms, heavy rain and lightning in Uttar Pradesh have reportedly claimed nearly 90 lives with many injuries and homes damaged. Our thoughts are with all the families affected. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Irchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Desi family. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Irchi Mornings. And सुनो, producer Namit Malhotra just dropped a statement about the upcoming Ramayana starring Ranbir Kapoor. And honestly, the confidence level is 1000%. He said if audiences don't like the film, the team will fold hands and apologize. अरे वाह. Indian customer service meets mythological blockbuster. Lekin honestly, respect for the honesty, yaar. Because making Ramayana is not just another movie project. It involves emotions, expectations, nostalgia and sab kuch attached ho jata hai. Especially Indian audience aisi hai, bahut zyada emotional hai. The film is reportedly being made on a budget of 4,000 crore rupees. That's 4,000. Oh my God. And at this point, हमारी collective bank accounts have said हम log out कर रहे हैं. Apparently, it's a two-part cinematic spectacle with massive efforts going into the actors, visuals, directions. Basically, जितने भी लोग हैं, वो सारा अपना full संस्कारी energy इसमें डाल रहे हैं and creating something even larger than Avengers. And you and I being Desi audiences, हम trailer का background music पर भी full PhD analysis करते हैं. VFX ठीक था नहीं था, हनुमान जी का चेहरा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था या बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी पावरफुल होनी चाहिए थी, ये सारी बातें हम लोग करते हैं. ऑनेस्टली दो, इफ डन राइट, दिस कुड बी ह्यूज ग्लोबली फॉर इंडियन स्टोरी टेलिंग. सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस एंड पॉपकॉर्न रेडी. फिलहाल तुम जल्दी से अपना इंस्टाग्राम खोलो, ढूंढो मेरा नाम, मिर्ची प्रिस इज द हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड फॉलो मी देयर. और व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033 6 4 7 2 double 4. Right now, stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रेडिंग एट $4,700, $4,700 पड़ रहे हैं, उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड के प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15% इंडिया से कंपेरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में सस्ते हैं। जी हाँ, गोल्ड के प्राइजेस अमेरिका में 15% हिंदुस्तान से सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स की टीम से आप कनेक्ट करें और गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करते हुए रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड दैट्स इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट फॉर टुडे। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची आवर का थ्री ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज इन बीजिंग मीटिंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड थिंग्स गॉट अनएक्सपेक्टेडली होलसम। प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेज शी, यूर अ ग्रेट लीडर एंड एडेड, पीपल डोंट लाइक मी सेइंग इट बट आई ऑलवेज से द ट्रूथ। एंड नंबर टू, बट थिंग्स गॉट स्पाइसी ड्यूरिंग द ट्रंप शी मीटिंग व्हेन अ स्कफल रिपोर्टेडली ब्रोक आउट अमंग कैमरा पर्संस इनसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम। वन कैमरा इवन फेल एंड समवन वाज हर्ड येलिंग सम ऑफेंसिव स्लर्स। And number three, per a chemistry teacher from Sikar, Rajasthan became the unexpected hero in exposing the alleged NEET UG 2026 paper leak. After seeing a paper shared on WhatsApp, he compared it to the real exam and reportedly found dozens of matching questions before alerting the authorities. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033. That's 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: हेलो।
1: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
0: कौन बोल रहा है?
1: और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
0: क्या मजाक चल रही है?
1: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
2: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Welcome to Rashi Zone number 1 on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: एरीज यानी मेष राशि, मनी स्ट्रेस कम होने वाला है. ओके, सो डोंट पैनिक. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन. लकी नंबर इज 19. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बिग प्लानिंग एनर्जी टुडे. लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो एंड यस, स्प्रेडशीट्स कैन बी हॉट. लकी कलर फॉर यू इज ब्लू. लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि, समथिंग दैट वॉज हॉरिबल फॉर यू बिफोर बस खत्म हो गया है समझो. यू फाइनली आउट ग्रोइंग ओवर थिंकिंग फेज. लकी कलर इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 8. कैंसर यानी कर्क राशि, आज आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो यार. एवरीबडी सीज लाइफ डिफरेंटली, स्पेशली पीपल हु पुट केचप ऑन बिरयानी. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 27. लियो यानी कि सिंह राशि, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ यार. जंप इनटू दैट चैलेंज. कॉन्फिडेंस फर्स्ट, पैनिक लेटर. लकी कलर फॉर यू इज डस्ट कलर. लकी नंबर इज 3. एंड वर्गो यानी कन्या राशि, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ टुडे. समवन पर्सुएसिव मे ट्राई चेंजिंग योर वाइब, बट योर इंस्टिंक्ट्स आर स्मार्ट smarter than group chats. Lucky color is grey color. Lucky number is 31. And that's it for Rashi Zone number 1. Second part of Rashi Zone लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में. तब तक तुम Mirchi दर bangers सुनो और मुझे follow करो. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp पर अपने messages drop करो 9033 Mirchi पर. That's 9033647244. Right now stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड आई गॉट विद मी राशि जोन नंबर 2। लेट्स हेड स्ट्रेट इनटू दैट
3: मिर्ची राशि जोन।
2: लिब्रा यानी तुला राशि, थोड़ा सीक्रेटिव रहना बेटर है, नॉट एवरी प्लान नीड्स पब्लिक अनाउंसमेंट। नजर भी एक चीज होती है बॉस। लकी कलर इज प्लम कलर, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑन फायर टुडे, से व्हाट यू फील कामली बिफोर योर फेस सेज इट अग्रेसिवली। लकी कलर फॉर यू इज रेड, लकी नंबर इज 22। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, डेलीगेट करो अपने काम। Even CEOs don't carry their own office chairs. Lucky color is turquoise, lucky number is 5. Capricorn yani Makar Rashi, your talent is shining bright today and honestly, some people are nervous about your glow up. Continue anyway. Lucky color is silver, lucky number is 40. Aquarius yani Kumbh Rashi, someone close may say something unbelievable today, but surprise, they might actually be right. तो प्लॉट ट्विस्ट ये है कि उनकी बात सुनो। लकी कलर इज नियॉन मिंट, लकी नंबर इज 14। तो पाइसीज यानी मीन राशि, मेंटल फॉग लिफ्टिंग अलर्ट, आज क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें एंड योर कम्युनिकेशन गेम इज एक्स्ट्रा पावरफुल टुडे। स्पीक अप बिफोर समवन एल्स टेक्स क्रेडिट फॉर योर आइडिया। लकी कलर इज सनसेट पीच, लकी नंबर इज 29। एंड दैट वॉज योर राशि जोन नंबर 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टा और एक्स पर ढूंढो मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRC HIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: आँखों ही आँखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, कोई खुस खुस खुस खुस। ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, कोई गुड़ गुड़ गुड़।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my beautiful people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings and now it's wrapping up. And जाने से पहले तुम्हें एक American influencer के funny and super honest struggle के बारे में बताती हूँ. Regarding South Indian food that has gone totally viral online. From dosa to other iconic dishes, his reactions were pure gold. Social media loved how genuinely curious and authentic he was. यार वैसे honestly ना मुझे बड़ा मजा आता है जब foreigners discover करते हैं Indian food. That's like my favorite genre. ऑनलाइन ये इन्फ्लुएंसर जो है ये ऑनलाइन जाने जाते हैं डाइन विद केंट के नाम से. सो यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो. सो फर्स्ट ही सीज द डोसा एंड ही गोज, इज दिस क्रिस्पी बरीटो पैनकेक? मीनवाइल एवरी साउथ इंडियन आंटी इज लिस्टिंग टू दिस एंड सेइंग बेटा रिस्पेक्ट द डोसा. बट जोक्स अपार्ट, इट्स ऑनेस्टली सो कूल सीइंग रीजनल इंडियन क्विजीन गेटिंग सो मच ऑफ ग्लोबल लव, बिकॉज इंडियन फूड इज नॉट जस्ट बटर चिकन एंड नान. ओके, वी गॉट सांबर्स, वी गॉट रसम, वी गॉट अपम, we've got podi, we've got filter coffee. Basically, we have a lot of food to cover. And the best part is the food really, really connects people. And mostly Indian food is loved globally, right? Acha, aaj breakfast mein kya kha rahe ho? If it's dosa, then tell me. Mirchi Pris is my handle name, Instagram or X par. Abhi ke liye meri taraf se tada bye-bye. You stay tuned and be good. Milungi tumse kal, same time, same place, same frequency. Tab tak tumhare liye Mirchi dar bangers chhod kar ja rahi hu. Stay tuned and stay hot. We'll be right back.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बस यही तो करते हैं हम यहाँ पर, एक याद आती है और हम साथ साथ पूरी की पूरी बारात निकाल देते हैं यादों की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने फिल्में, पुराने गाने, और एक्चुअली पुराना कहाँ होता है, जब भी इनका जिक्र होता है कोई बात होती है तो कोई ना कोई ऐसी याद है जो ताज़ा हो जाती है। जैसे कयामत से कयामत तक फिल्म के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला था, सबकी अपनी अलग अलग एक याद होगी, है ना। जो उस टाइम पे टीनेजर्स रहे होंगे या यंगस्टर्स रहे होंगे या रिलेशनशिप में होंगे, उनके लिए फिल्म अलग मायने रखती होगी। हो सकता किसी ने अपने पार्टनर के साथ ही जाके फिल्म थिएटर में देखी हो, किसी ने फैमिली के साथ देखी हो, या मेरे जैसे कभी बाद में VCR पे वीडियो कैसेट में देखी हो। हो सकता है किसी ने आमिर खान को सबसे पहले रंग दे बसंती में देखा हो, फिर उसको पता चला हो कि कयामत से कयामत तक उसकी पहली फिल्म थी, या थ्री इडियट्स में उनको पहले देखा हो और बाद में QSQT कयामत से कयामत तक के बारे में पता चला हो। सो पुरानी यादें पुरानी होती नहीं है, हमेशा नई रहती हैं हमारे दिल में। ये गाना सुन लेते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi.
1: हेलो,
2: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट, मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501।
1: हेलो,
3: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आपको शायद पता हो या शायद ना भी पता हो कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक बहुत ही अमेजिंग सटायर शो आता था, द फ्लॉप शो बाय जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी उसके मेकर थे, उसमें वो एक्ट भी करते थे, क्या अमेजिंग थे वो। तो उसमें सोसाइटी, कल्चर, सिस्टम में जितने फ्लॉज है ना, उनको कॉमेडी के जरिए दिखाया जाता था। और हर एपिसोड के एंड में एक पैरोडी होती थी उसी टॉपिक से जुड़ी हुई। तो एक बार एक एपिसोड में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज दिखाए थे, जिसमें जसपाल भट्टी खुद एक PhD गाइड होते हैं, उनका एक स्टूडेंट होता है जो केमिस्ट्री में PhD कर रहा होता है। और उसके एंड में जो पैरोडी थी ना, वो होती है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे, करवाते नगर चोरी ये थीसिस तुम कहीं से, पूरी न होती डिग्री रह जाते न कहीं के, हम डिग्रियों को आपकी सौगात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे। इसके एपिसोड्स, इसकी ये पैरोडी सब YouTube पे अवेलेबल है। फिलहाल हम ये गाना सुनेंगे सफर फिल्म का, ओरिजिनल वाला मतलब पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: कुछ दिन पहले ना मैं एक फिल्म देख रही थी, 50s की कोई फिल्म होगी, उसमें वाराणसी को काशी कहकर मेंशन किया गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अचानक से मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि पुराना नाम है ना आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता है, हम वाराणसी या बनारस बोलते हैं। फिर मैंने काशी का मतलब गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये संस्कृत के एक शब्द काश से बना है जिसका मतलब होता है चमकदार या प्रकाशमय होना। तो काशी मतलब सिटी ऑफ लाइट्स। एक पुराना गाना भी था जिसमें काशी का मेंशन था, 1954 की नागिन फिल्म का गाना, काशी देखी मथुरा देखी देखे तीर्थ सारे, कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ये गाना हेमंत कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने गाया था, हेमंत दा का ही कॉम्पोजिशन था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था। खैर यहाँ पे हम एक और गाना सुनेंगे अब जिसमें वाराणसी को बनारस कहा गया है। समझ गए ना आप कौन सा गाना है? सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए, अरे ऐसा झटका लगे।

रानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

ये क्लासिक गाना 1972 की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना पिक्चराइज्ड है रेखा एंड रणधीर कपूर पे। वैसे इस फिल्म में रेखा का नाम रेखा ही होता है और रणधीर कपूर का नाम लक्ष्मण, जो रामपुर के वासी होते हैं और गांव से शहर में आ जाते हैं और बड़े मजे होते हैं। फिर क्यूट सा इनका गेटअप जो है उसमें दिखाया गया है, धोती कुर्ता पहनते हैं, साथ में अपनी पोटली लिए फिरते हैं, लोटा लिए फिरते हैं और एक संदूक लिए फिरते हैं बक्सा, जिस पर लिखा रहता है नमस्ते जय राम जी की। वैसे आपको पता है रेखा ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि रणधीर कपूर उनके फेवरेट को स्टार थे। उस दौरान उन्होंने काफी फिल्मों में साथ में काम किया था, अर्ली 70s से मिड 70s तक। चलिए फिलहाल 80s में आते हैं, 80s का ही ये ब्यूटीफुल क्लासिक गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1972 की फिल्म जवानी दीवानी कादर खान साहब की एज डायलॉग राइटर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म के डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने कादर खान साहब का लिखा एक प्ले देखा था और तब से वो उनकी राइटिंग के फैन हो गए थे। तो उन्होंने कादर खान साहब को अप्रोच किया फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए। जवानी दीवानी से पहले भी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन तब कादर खान साहब ने मना कर दिया क्योंकि वो एज सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अपने काम से काफी खुश थे और फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब उनको बार बार ऑफर्स आने लग गए तब उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और बेदी साहब की बात मान के जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिख दिए। चलिए फिलहाल तो इस फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vidva la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्ज?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Purani jeans with Charu, only on

एक बहुत ही अमेजिंग क्लासिकल सिंगर रही हैं, जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, बेगम परवीन सुल्ताना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गजल्स, ठुमरियां और कई गीत गाए हैं। फिल्मों में गाने बहुत ज्यादा नहीं गाए हैं, असमीज फिल्मों में गाए हैं, हिंदी फिल्मों में भी गाए हैं, जिनमें से ये गाना उफ इतना पसंद है मुझे। हालांकि इसका एक दूसरा वर्जन जो किशोर दा ने गाया है वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस गाने की जो गहराई है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए परवीन सुल्ताना जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस साल। वैसे अवार्ड शायद उनके लिए इतने मायने नहीं रखते हैं, इस तरह के जो सिंगर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी कला के लिए जीते हैं, वही उनका रिवॉर्ड होता है और उनकी गायकी से भी पता चलता है। तो कुदरत फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय बेगम परवीन सुल्ताना जी सुनते हैं। रिटन बाय मजरू साहब, कंपोज्ड बाय पंचमदा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

आपको पता है जब सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग हो रही थी तो उस पे क्या होता था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म तो देखो फिल्म कैमरा से शूट होती थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो एक होम वीडियो वाला कैमरा होता है ना, वो भी रखा जाता था ताकि शाम को सारा देओल परिवार बैठ के VCR पे वो रिकॉर्डिंग देखे कि जी हमारा पुत्र सनी देखो जी कितनी बढ़िया सुंदर एक्टिंग कर रहा है, सदके बारी जाए हम। या मे बी नो फीडबैक के लिए भी देखें कैसा कर रहा है, इससे बेटर कर सकता है। इसी बात पे बेताब फिल्म का गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

हम बॉलीवुड की अर्ली साईफाई मूवीज के बारे में सोचें तो जहन में मिस्टर इंडिया आती है 1987 की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है 1964 में भी एक साईफाई रोमांटिक कॉमेडी टाइप की फिल्म बनी थी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इसमें किशोर कुमार थे। अब किशोर कुमार के पास उसमें क्या सुपर पावर होती है, आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, पर आप ये फिल्म देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग। और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत पॉपुलर है जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गाया है किशोर दा ने। एक्चुअली इस गाने को टूटे फूटे चोट खाए दिल वालों का एंथम डिक्लेयर किया जा सकता है। व्हाट अ सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

कई बार कुछ मूवीज होती हैं जो इतनी खास नहीं होती हैं, लेकिन आपको याद रह जाती हैं कुछ इक्की दुक्की वजह से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी एक फिल्म थी 1987 की दिल तुझको दिया, जिसका इक्का कारण था उसका ही गाना जो हम सुनेंगे। एक जो दुख का कारण था वो था अमरीश पुरी साहब का पॉजिटिव रोल। हालांकि इस फिल्म में पहले वो एक गैंगस्टर एक फाइटर होते हैं, लेकिन बाद में वो सुधर जाते हैं और हीरो होता है कुमार गौरव, उसकी हेल्प भी करते हैं। बहुत ही अडोरेबल सा उनका कैरेक्टर है एंड उसमें जो उनका लुक है वो बाल्ड लुक है। आई थिंक ये पहली फिल्म है जिसके लिए अमरीश पुरी साहब ने अपना पूरा सर शेव किया था। आई थिंक किसी और फिल्म के लिए किया था, उसी दौरान इस फिल्म में काम कर रहे थे, ऐसा कुछ सीन था। तो अगर आप कभी ये फिल्म देखेंगे तो अमरीश पुरी साहब को तो जरूर याद रखेंगे। एंड कमिंग टू इस फिल्म का गाना, कंपोज्ड एंड रिटन बाय राजेश रोशन, संग बाय लता मंगेशकर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua, la burga. Mirci, burga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

1965 की फिल्म खानदान का गाना लता जी का गाया हुआ, कंपोज किया है रवि साहब ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, नूतन जी, सुनील दत्त साहब, ओम प्रकाश जी, ललिता पवार जी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो अपना प्ले किया है वो है प्राण साहब ने। इनका नेगेटिव रोल है इसमें, वो ऐसे मतलब गुंडे नहीं बनते हैं कि जिनका अड्डा है वहां पे बंदूक है, बारूद है, उनके गुर्गे हैं, चमचे हैं, ये फैमिली ड्रामा है। तो इसमें ये फॉरेन रिटर्न भतीजे का रोल प्ले करते हैं जो घर में आके कलेश कर देता है खानदान में आके। अभी प्राण साहब एक तो इतने न्यूएंसेस अपनी तरफ से अपने किरदार में डालते थे ना, तो ये इनका जो किरदार है इसको ऐसा दिखाया गया है कि सर्कस के जोकर जैसे कपड़े पहनता है, उसकी ऐसी हिटलर जैसी छोटी सी मुच्छी है, उस पे वे अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं प्राण साहब, और जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने इस किरदार को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है ना कि मजा आ जाता है। वाह वाह। और फिलहाल यहाँ पे ये जो गाना आ गया ये भी वाह वाह है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और इस फिल्म ने ना 1969 से राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की जो मैराथन चल रही थी उस पे सॉर्ट ऑफ स्टॉप लगा दिया था। आराधना फिल्म जो उनकी ब्लॉकबस्टर हुई उसके बाद कुछ 17 फिल्में कंसेक्यूटिव हिट्स थी राजेश खन्ना की 1969-70-71 में। सो 1971 में ये महबूब की मेहंदी फिल्म इतनी नहीं चली और यहाँ से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। लेकिन ये जो गाना आ रहा है ये गर्मा गर्म तड़कता भड़कता सुपरहिट सॉन्ग पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu।

हाँ, बरसात की रात फिल्म की ये आइकॉनिक कव्वाली। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कव्वाली तो अब धुरंधर फिल्म की भी पहचान बन चुकी है। वैसे आपको पता है ये एक और ओजी कव्वाली से इंस्पायर्ड है जो बहुत पहले के सूफी पोएट अमीर बख्श साबरी ने लिखी थी। न तो बुध कदे की तलब मुझे, न हरम के दर की तलाश है। ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी, उससे पहले उनके फादर फतेह अली खान साहब और उनके अंकल मुबारक अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी। और बरसात की रात की कवाली का जो सेकंड पार्ट है भाई, ये 12 मिनट की कवाली है। कुछ 5 मिनट हमने सुन लिए, अब बचे हुए 7 मिनट सुनेंगे। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: हमारी इंडस्ट्री को इस तरीके की महिलाओं की और भी ज्यादा जरूरत है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिल्म मेकर लाइक मीरा नायर। मतलब भाई इस मोहतरमा ने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेम से, क्वींस ऑफ कटवे, ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में हमें दी हैं जो बिल्कुल लीक से हटकर रही हैं। इनकी जो स्टोरी लाइन रही है उसमें कोई शूशा, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं रहता है। ये लेजिट बहुत ही रॉ स्टोरीज लेकर आती है ऑन स्क्रीन। एंड वन सच अपकमिंग फिल्म ऑफ हर इज अमरी, इंस्पायर्ड बाय द लाइफ एंड आर्ट ऑफ अमृता शेरगिल, जो एक पायनियरिंग वुमन रही है ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया, जिनके बोल्ड एस्थेटिक्स ने उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट्स को एकदम से हिलाकर रख दिया था। बाकी आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म, क्योंकि इसमें अंजलि सिवरामन जो हैं वो अमृता शेरगिल के किरदार में नजर आएंगी, एमिली वॉटसन विल बी प्लेइंग हर मदर, जयदीप अहलावत उनके पिता का किरदार निभाएंगे और साथ ही जिम सार्ब एंड प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में नजर आने वाले हैं। माइंड यू प्रियंका चोपड़ा ने तो अपने पैसे भी लगाए हैं एज अ प्रोड्यूसर फॉर द मूवी। ऑल्दो फिल्म का रिलीज डेट अभी तक आउट नहीं हुआ है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहा है तू?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: रात बड़ी है मस्तानी, तू दिल भर जानी, कर लेगा लागूड़िया।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। मैं गल्ला को गाला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेट गाला इज एवरीवेयर माय फ्रेंड। आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, आपको सिर्फ अलग अलग कुट्योर नजर आएंगे, जो अगर गलती से आपकी मम्मी या पापा देख लें तो बोलेंगे कि हैं, ये क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो चलिए हम भी मेट गाला डिस्कस कर ही लेते हैं, स्पेसिफिकली अबाउट ऑल द इंडियंस हु मेड इट टू द रेड कार्पेट दिस ईयर। सबसे पहले डेब्यूटांट करण जौहर की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने एंसेंबल में, जो कि मनीष मल्होत्रा ने बनाया था, उसमें रिनाउंड इंडियन पेंटर राजा रवि राम की पेंटिंग्स को दिखाया है, विच टुक अबाउट 2064 आवर्स टू मेक, यानी 86 दिनों में कम्प्लीट हो पाया था उनका ये कॉस्ट्यूम। वैसे बहुत सारे नॉट सो फैशन प्रेमी जो है ना, वो इनके इस लुक को बोल रहे हैं कि भाई रेड कार्पेट पे खुद कार्पेट बन के चले गए थे। बट आई डिफर फ्रॉम दैट, आई रियली लव्ड व्हाटएवर ही वाज वेयरिंग। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलू मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओ हेलो नॉटी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची वाले गेम की बात कर रही हूँ। यार आप कहाँ ही चले जाते हो। एनीवे सो इट्स टाइम, यू नो द ड्रिल, कि भाई आपको मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजना होता है, जिसके बाद मैं कॉल करके आपके साथ ये फिल्मी गेम खेलती हूँ। तो बहुत सारे नंबर्स ऑन अ डेली बेसिस आते हैं मुझे, तो मैंने सबसे पहले कॉल लगाया दीपक जी को। तो दीपक जी, क्या आप तैयार हैं ये गेम खेलने के लिए?
3: जी।
0: ओके, तो फिल्म ब्लफ मास्टर में फीमेल लीड रोल किसका था?
3: प्रियंका।
0: प्रियंका चोपड़ा की हिंदी फिल्म जिसमें वो विलन बनी है, या बोल सकते हैं उनके कैरेक्टर का नेगेटिव शेड है।
3: ऐतराज
0: की सेकंड हीरोइन कौन थी?
3: करीना।
0: करीना कपूर की लास्ट फिल्म विद शाहिद कपूर?
3: कपूर लास्ट फिल्म उड़ता पंजाब।
0: ग्रेट। उड़ता पंजाब का एक्टर जो सिंगर भी है?
3: दिलजीत।
0: दिलजीत दोसांझ ने किस सिंगर की बायोपिक में काम किया है?
3: चमकीला।
0: अमर सिंह चमकीला की फीमेल लीड कौन थी?
3: परिणीति।
0: परिणीति चोपड़ा की फर्स्ट फिल्म विद रणवीर सिंह?
3: रणवीर सिंह लेडीज वर्सेस रिकी बेल।
0: क्या बात है। लेडीज वर्सेस रिकी बेल की किस हीरोइन ने एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर से शादी की है?
3: उसमें कोई दूसरी हीरोइन भी थी क्या?
0: हाँ हाँ।

0: मिर्ची आहा मिर्ची पे खेला हो बे
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
3: आई नो मुझे बंगाली नहीं आती बट मुझे बड़ा मन हो रहा था यार इस तरीके से अनाउंस करने का कि वी आर प्लेइंग द बॉलीवुड गेम जहां मैं आपको कॉल करती हूँ कैसे आप मेरे डीएम में अपना नंबर भेजते हो वैसे। एनीवे इस गेम की शुरुआत हुई थी दीपक जी से जो अटक गए थे ऑन द क्वेश्चन की भाई लेडीज वर्सेज रिकी बहल की किस हीरोइन ने एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर से शादी की थी। अब इसके आगे का गेम खेलने के लिए अतुल इज ऑन द टेलीफोन लाइन, तैयार है सर? ओके, लेडीज वर्सेज रिकी बहल की किस हीरोइन ने एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर से शादी की है?
4: अनुष्का शर्मा।
3: अनुष्का शर्मा की डेब्यू फिल्म कौन सी थी?
4: बैंड बाजा बारात। नहीं सॉरी, रब ने बना दी जोड़ी।
3: ग्रेट, रब ने बना दी जोड़ी के मेल लीड का नाम क्या है?
4: शाहरुख खान।
3: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो प्राइवेट डिटेक्टिव बनते हैं?
4: बादशाह।
3: बादशाह की फीमेल लीड एक्टर का नाम?
4: ट्विंकल खन्ना।
3: ट्विंकल खन्ना की फिल्म जिसमें संजय दत्त भी थे?
4: जोड़ी नंबर वन।
3: ग्रेट, जोड़ी नंबर वन के सेकेंड मेल लीड का नाम?
4: गोविंदा।
3: गोविंदा की

0: Milci.
1: Escavana, puscavana, sacavana. Rambana. Murga, murga. La vieva la murga. Milci, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इनकी परफॉर्मेंस से मेन कैरेक्टर को भी सेल्फ डाउट हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं उन साइड कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ जिनके बिना एक फिल्म अधूरी है, और इनकी परफॉर्मेंसेज इस लेवल की रही हैं कि भैया ऑडियंस ने मेन कैरेक्टर को भी उतना प्यार ना दिया हो इन द फिल्म जितना इन साइड कैरेक्टर्स को मिल गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही पांच कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबू राव गणपत राव आपते को डिस्कस किया। अब नंबर दो पे फिल्म वेलकम से उदय शेट्टी और मजनू भाई को कैसे भूल सकते हैं यार। मतलब एक तो इन दोनों का परफेक्ट मिक्स, स्कैरी गैंगस्टर और फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट, और इनका जो ब्रोमांस है ना वो अलग लेवल, लेजेंडरी। वो नाना पाटेकर बोले तो उदय शेट्टी का कंट्रोल, उदय कंट्रोल हो, या फिर हमारे मजनू भाई का घोड़े पे गधे वाली पेंटिंग हो। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म भूल भुलैया से छोटा पंडित की भाई साहब प्लेड बाय राजपाल यादव। ये कैरेक्टर जो है ना, इसने अपना एक कल्ट बना रखा है। अब उनका पानी का नाम सुन के एकदम जोर से छलांग मारना हो, या फिर अपने आप को पूरे तरीके से लाल रंग में रंग के, कान पे अगरबत्ती लेके लोगों के बीच इधर उधर घूमना हो, इन शॉर्ट छोटे लाल का कैरेक्टर वॉज समथिंग जिसके बिना भूल भुलैया फ्रेंचाइजी इज इनकम्प्लीट। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसे ही कैरेक्टर्स की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल तब तक आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि ऐसे कोई कैरेक्टर्स आपको भी पसंद आए हैं कभी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साइड एक्टर्स में मेन कैरेक्टर एनर्जी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हर फ्राइडे हमें कोई ना कोई फिल्म जरूर मिलती है और हर फिल्म में मेन कैरेक्टर्स तो होते हैं लेकिन उनकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं। एंड आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे साइड एक्टर्स की डिस्कशन कर रही हूँ जिन्होंने मेन लीड से ज्यादा स्पेस हमारे दिल में बना ली है। और लिस्ट में सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आते की बात की। नंबर दो पे वेलकम के उदय शेट्टी एंड मंजनू भाई। नंबर तीन पे भूल भुलैया से छोटा पंडित। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट मुन्ना भाई एमबीबीएस से सर्किट। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। जिस तरीके से अरशद वारसी ने सर्किट के कैरेक्टर के जरिए एक सच्चा दोस्त अपने आप को प्रूव किया है ऑफ मुन्ना भाई, बोले तो संजय दत्त का किरदार ऑफ कोर्स इज रियली कमेंडेबल। एंड उनको देखने के बाद इन द मूवी हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि भाई अपने जीवन में भी एक सर्किट तो मांगता है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लास्टली बात करते हैं फिल्म ऑल द बेस्ट से आरजीवी की, बोले तो रघुनंदन दास गोवर्धन दास वाकावले। ढोंढू जस्ट चिल, ये डायलॉग हर दूसरे इंसान के जुबान पे जरूर है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो हाई ऑन स्ट्रेस है लेकिन जिस तरीके से उनकी फिलॉसफी है ढोंढू जस्ट चिल, इट जस्ट रेजोनेट्स विद द एंटायर जनरेशन। तो बताइए मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ ऐसे ही साइड कैरेक्टर्स का नाम ऐड करना चाहेंगे? देन फील फ्री टू डू दैट। 9930983983 हमारा व्हाट्सएप नंबर है।

0: rules are meant to be broken.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: Unless you are at Met Gala, जिस चीज की हाइप फिलहाल सोशल मीडिया पे हर जगह बनी हुई है. Well, कुछ क्रेजी मेट गाला रूल्स हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो, तो बताना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज, मेट गाला का जो मेन्यू होता है, फूड मेन्यू, उसमें नो गार्लिक नो अनियन वाली चीज होती है. मतलब सात्विक भोजन होता है ब्रो. गार्लिक और अनियन की वजह से थोड़ा बैड ब्रेथ वाली फीलिंग आती है ना, तो आप वहां पे क्लोज अप नेटवर्किंग अगर कर रहे हैं और आपके मुंह से गंदी सी स्मेल आ गई, तो फिर सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा. सो या, नो गार्लिक नो अनियन. सिर्फ इतना ही नहीं, एंट्रेंस फी होती है मेट गाला के लिए. एक इंडिविजुअल टिकट जो है, इट कॉस्ट अराउंड $1,00,000, जो पिछले साल तक $75,000 हुआ करता था. और यहाँ पे ही आपकी जद्दोजहद खत्म नहीं हो जाती. अगर आपने खरीद लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंट्री मिल जाएगी. भाई, आपको एज अ गेस्ट अप्रूव होना पड़ेगा बाय नॉन अदर देन एना विंटूर. सिर्फ इतना ही नहीं, एक फुल टेबल एट मेट गाला कॉस्ट्स ओवर $350,000, जो टिपिकली बड़े मेजर फैशन हाउसेज या टेक जायंट्स खरीदते हैं. फिर वो अलग अलग सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करते हैं टू सिट ऑन देयर टेबल एंड वेयर देयर डिजाइंस. मूविंग ऑन, देयर इज दिस 20-second रूल. हाँ जी, गेस्ट जो है वो रिपोर्टेडली सिर्फ 20 सेकंड के लिए अलाउ किए जाते हैं टू ग्रीट एना विंटूर. द फोर्थ रूल इज फोन बैन. 2015 से जितने भी गेस्ट्स आते हैं वहां पे, दे आर टेक्निकली फॉरबिडन फ्रॉम यूजिंग फोन्स और पोस्टिंग टू सोशल मीडिया इनसाइड द इवेंट. रूल नंबर 5 इज सीटिंग असाइनमेंट. सीटिंग चार्ट्स बजाबते तैयार किए जाते हैं टू इनकरेज न्यू कनेक्शंस. In fact, spouses and partners are almost never seated at the same table. क्योंकि आप उनके साथ तो जिंदगी बिता रहे हैं भाई, इस जगह पे आके तो कम से कम कनेक्शन बढ़ाइए अपने. Well, Met Gala के और भी कुछ ऐसे ही क्रेजी रूल्स हैं, बट उनके बारे में चर्चा होगी इन अ वाइल. टिल देन, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. मैं हूँ आपके साथ श्रुति. इट्स हॉट.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: गुड इवनिंग न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों आज है गुरुवार की शाम, May 14th, और हर दूसरे गुरुवार की शाम को यहाँ पर इस खास शो में होती है रियल एस्टेट की बातें विद डील मेकर आदर्श लाल जी। जी हाँ, रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श लाल जी के साथ हमारा बहुत ही खास शो एवरी सेकेंड थर्सडे आने वाला, जहाँ पर हमें मिलती है एक्सपर्ट रियल्टर एडवाइस फ्रॉम आर एक्सपर्ट रियल्टर एंड नेगोशिएटर आदर्श लाल जी। तो दोस्तों आज आदर्श जी हमारे साथ जितने भी बातें करेंगे, आपके जितने भी सवाल हैं मुझ तक जरूर पहुंचाइए ताकि मैं आदर्श जी से पूछ पाऊं। क्योंकि अगर आपको रियल एस्टेट के किसी भी एस्पेक्ट पे मदद चाहिए, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी बाइंग हो, सेलिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फिर बिजनेस बाइंग हो, इन सारे एस्पेक्ट पे हमारे आदर्श जी आपकी मदद कर सकते हो। चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट रियल्टर आदर्श लाल जी का आज के इस बहुत ही खास शो में। नमस्ते आदर्श जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, नमस्कार सिद्धि जी, आपको, आपके सभी, ये हमारा प्यारा जो शो है मिर्ची 92.7 FM, और आप कहीं से भी सुन रहे हैं, चाहे ऐप से सुन रहे हैं, मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को मेरी प्रेम भरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केम छो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बड़ा ही प्यारा वेदर है, कभी बारिश है कभी धूप है, मगर रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, ना बारिश है ना कुछ है, एकदम हॉट ही हॉट है। इसी के बारे में आज बहुत सारी चर्चा करेंगे हम लोग रेडियो पर, और आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, आप लोग फोन करते हैं, आप लोग मिलते हैं। आज भी मैं किसी से मिल के आया जिन्होंने रेडियो पे मुझे सुनना था, उनके घर पे गया, उनके घर पे चाय पी, उनका भी घर बेचूंगा। तो थैंक यू सो मच संजय जी, आपके घर आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, आपके बच्चों से मिलके बड़ा अच्छा लगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हेल्प यू सेल योर प्रॉपर्टी फॉर टॉप डॉलर्स।
0: बात है तो आदर्श जी, जैसे कि हम अभी जस्ट बात कर रहे हैं, न्यू जर्सी का वेदर तो अप एंड डाउन होता ही रहता है, उसी के साथ साथ आपने बताया कि रियल एस्टेट का मार्केट हॉट है, लेकिन मार्केट का असली हाल एग्जैक्टली क्या है, प्लीज हमारे लिस्नर्स को बताइए।
1: नहीं, ऐसा है कि अभी भी बिडिंग वॉर्स चल रही हैं, जो अच्छे घर हैं, जो वहाँ पे मैंने भी कई प्रॉपर्टीज पे यू नो ऑफर डाल रहे हैं हम लोग, अबव आस्किंग डाल रहे हैं, यू नो, तो व्हेन अबव आस्किंग बिडिंग वॉर होती है, इट टेल्स के वी आर स्टिल इन सेलर्स हॉट मार्केट, और प्रॉपर्टी है जो अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन में, अच्छी स्कूल डिस्ट्रिक्ट, तो वो प्रॉपर्टी अबव आस्किंग में। तो हमने एक प्रॉपर्टी 650 की लिस्ट हुई थी, दिस इज इन स्कैटरवे, और हम लोगों की ऑफर है ऑलमोस्ट 40,000 अबव आस्किंग। अभी भी मालूम नहीं है कि हमको वो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, बट मुझे बड़ा हाई चांस लगते हैं, बिकॉज वो जो सेलर का एजेंट है शी नोज मी वेरी वेल, उन्होंने बताया कि आपका ऑफर इज वेरी स्ट्रांग, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि स्टिल इफ दे विल एक्सेप्ट हमारा ऑफर या नहीं, भगवान जानता है। बट देखिए, आप जब मेरे साथ आप काम करते हैं तो मैं आपको अच्छी गाइडेंस देता हूँ कि इस क्रेजी हॉट मार्केट में आपके ऑफर को कैसे बेस्ट प्रेजेंट किया जाए, ताकि वो आपके, होता क्या है कि आप एक अच्छे जो नेगोशिएटर से काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको ऐसे प्रेजेंट करता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, गारंटी तो किस चीज़ की भी नहीं होती है, बट आपको घर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी कैलिफोर्निया से आए थे, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से मुझे ढूंढा, लाइक 2 weeks ago, उन्होंने कहा कि भाई वी आर वर्किंग फॉर अनदर एजेंट फॉर मोर देन 3 months, और हमारा काम किधर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने उनको कुछ 4-5 घर दिखाए लास्ट वीक, और हमने 2-3 ऑफर भी डाली, बट अभी मैं ये आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, मुझे अभी ईमेल आ चुकी है कि उनकी ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है। देखिए, एक हफ्ता पहले, हम 2 हफ्ता पहले मिले, उनको 4-5 घर दिखाए, उनको अच्छी गाइडेंस दी, और भगवान की कृपा से उनकी जो ऑफर जो है एक्सेप्ट हो चुकी है। सी, वो मतलब कह रहे हैं कि 3-4 महीने से वो 50 घर देख चुके हैं, मगर उनका जो एजेंट था उनको अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा था, उनको अच्छा गाइड नहीं दे रहा था, बता रहा था कि भाई कितनी की ऑफर सबमिट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि जब एजेंट आपको अच्छे से गाइडेंस देगा नहीं, तो आपके जो चांसेस काफ़ी ये जो है ना कम हो जाते हैं। तो एक अच्छा एजेंट का आपके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा अटॉर्नी, एक अच्छा एजेंट का होना ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ काम करें, बट एटलीस्ट इफ़ यू वांट टू वर्क विद एनी रियल्टर, मेक श्योर आप 2-3 से बात करें, मिलें उनसे, उनका एक्सपीरियंस पूछें, कितने घर वो लोगों ने बेचे हैं, क्या तभी आप यू नो मेरे यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। सिद्धि जी आपको मेरा नंबर बताएंगी, आई एम 24/7 आपके सेवा में हाजिर हूँ मैं।
0: बस दोस्तों इसी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हम आदर जी को हर दूसरे वीक यहाँ पर इस शो में बुलाते हैं, तो उनका नंबर जरूर नोट डाउन कीजिए 2016001910 2016001910 है आदर जी का नंबर। और दोस्तों फिलहाल मार्केट में इतने उतार चढ़ाव है, ऐसे में बायर्स को क्या करना चाहिए, सेलर्स को क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल हम आदर जी के लिए लेकर आएंगे, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtuala burka.
1: Milci, burka. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
1: कौन बोल रहा है
2: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रही है
2: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: इट्स हॉट

0: नमस्कार, गुड इवनिंग न्यू जर्सी। मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और फिर एक बार स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही खास शो में, जहाँ होती है रियल एस्टेट की हॉट और हैपनिंग बातें। रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श लाल जी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आदर्श जी ने हमें बताया कि न्यू जर्सी का वेदर भले ऊपर नीचे हो, लेकिन रियल एस्टेट का मार्केट तो हॉट है। तो चलिए फिर एक बार स्वागत करते हैं आदर्श जी का और उनसे पूछते हैं कि आदर्श जी, देखिए यहाँ पर हमारे बीच जी जो है वो एवरी डे हमें इंटरेस्ट रेट्स बताते हैं, मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट बताते हैं, कंसिडरिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, कंसिडरिंग इतने सारे जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट फिलहाल काफी ऊपर जा चुका है। तो उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे हमारे बायर्स को और स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स को?
1: हाँ जी, आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है। हाँ जी, मेरी भी बिश जी जो लायन मॉर्गेज के जो काफी पुराने लेंडर हैं न्यू जर्सी के, तो मेरी उनसे भी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि 30 ईयर फिक्स रेट इज 6.25%। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, जब दो हफ्ता पहले इट वॉज बिलो 6%, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। मगर मैं अपने बायर जो मार्केट में है, दे वॉन्ट टू बाय देयर फर्स्ट होम या तो सेकेंड होम या कुछ भी है, आई थिंक उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप डर जाएंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया और आप रुक जाएंगे, तो आपको रुकना नहीं है। क्या है कि मार्केट के प्राइजेस घरों के ऊपर जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट तो आप फ्यूचर में यू कैन ऑप्शन रहती है, यू कैन ऑलवेज रीफाइनेंस योर प्रॉपर्टी, राइट? तो अभी थोड़ा ज्यादा है, आपकी मंथली थोड़ी पेमेंट ज्यादा होगी, बट आई थिंक टू वेट एंड नॉट बाय द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट इज हाई, आई थिंक इज नॉट स्मार्ट मूव। आई थिंक आपको घर अभी बाय कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइजेस एवरी ईयर न्यू जर्सी में बढ़ रहे हैं। न्यू जर्सी की मार्केट वी आर स्टिल इंक्रीजिंग, कभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इट मीन्स के समझदार आदमी वही है जो घबराना नहीं है, और अपने मेरे हिसाब से आपको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चलती का नाम है गाड़ी, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। ये देखिए, जो डर जाएगा वो उनका लॉस होगा। तो आई थिंक बाकी ये कहना चाहता हूँ, सुनिए सबकी, करिए मन की जैसी आपकी इच्छा है। एक एक्सपर्ट एडवाइस तो यही है कि आपको रुकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस साल रुक जाते हैं, घर नहीं लेते हैं, अगले साल लेते हैं, आई थिंक आपको वही घर का शायद 50-75 हज़ार और ऊपर देना पड़े। तो ये मैं कहना चाहूंगा अपने भाइयों को, बहनों को। तो मेरे ख्याल से
0: तो दोस्तों देखिए, अगर आप बायर कम्युनिटी से हो और आपको भी इसी बात की दिक्कत हो रही है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते ही जा रहा है, एक्सपर्ट एडवाइस मिल चुकी है हमारे आदर्श जी से, और भी हमारी बातें यहाँ पर जारी रहेंगी, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ। और आदर्श जी का नंबर जरूर नोट डाउन कीजिए, 201-600-1910, 201-600-1910 आदर्श जी का नंबर है। आप चाहे उन्हें टेक्स्ट कर सकते हो, वॉइस मेल भेज सकते हो, क्योंकि हमारे जो आदर्श जी है वो हमेशा कॉल बैक करते हैं, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। 201-600-1910 आदर्श जी का नंबर। और जितने भी पोटेंशियल बायर्स है, नॉट जस्ट रियल एस्टेट बायर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी, उनके लिए क्या क्या न्यू जर्सी में अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में जल्द ही बात करेंगे राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गुड इवनिंग न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और फिर एक बार स्वागत है आपका गुरुवार की इस खूबसूरत शाम में। आज है मई 14 की शाम और देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट मिड मई आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल बायर्स हैं जो सब, क्योंकि समर आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है। आई डोंट नो, जर्सी का वेदर काफी ऊपर नीचे रहता है, बट दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर प्रॉपर्टी व्यूइंग। और ऐसे में हमारा जो ये बहुत ही खास शो है रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श लाल जी के साथ, इस शो में होती है बहुत सारी हॉट और हैपनिंग रियल एस्टेट मार्केट की बातें। फिर चाहे आप बायर हो या फिर सेलर हो या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जी आदर्श जी ने हमें बताया कि अरे अगर मॉर्गेज रेट भी ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे में बायर्स को क्या करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ फिर एक बार स्वागत करते हैं आदर्श जी का और पूछते हैं उनसे कि आदर्श जी ये तो बता दिया कि इंटरेस्ट रेट अगर आगे पीछे है भी तो बायर्स को क्या करना चाहिए, लेकिन न्यू जर्सी में लिस्टिंग्स कहाँ है वो भी बताइए।
1: ये तो आपका $1 million क्वेश्चन है कि लिस्टिंग तो बहुत सारी है, यू नो लिस्टिंग तो हर एरिया में है, अच्छे घर भी हैं खराब घर भी हैं, पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा न्यू कंस्ट्रक्शन होम आया है। दिस इज इन मॉन्टगोमरी टाउनशिप इन समरसेट काउंटी एंड प्रॉपर्टी एड्रेस इज 45 किल्डी रोड इन मॉन्टगोमरी। दिस इज 5400 स्क्वायर फीट न्यू कंस्ट्रक्शन होम, 6 bedrooms हैं, 5 bathrooms हैं और आस्किंग प्राइस इज $2.5 million। जी हाँ, $2.5 million, ग्रेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ग्रेट लोकेशन, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको और मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है आपके मिडिलसेक्स काउंटी में, उसका एड्रेस है 24 Stratton Court, दिस इज अ टाउन हाउस, 3 bedroom 2.5 bath, बेसमेंट, 1 car garage, आस्किंग प्राइस ओनली $570,000। Very nice property, very motivated seller, fully renovated, fully move-in ready condition property hai in Somerset County in Berlin, Saraville. Asking price only $570,000. Agar aapko ye property dekhni hai ya, mere paas bahut sari aur properties bhi hain, 2 bedroom, 1 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom, 2.5 bath, asking price $850,000 in Somerset County in Hillsborough. अगेन हिल्सबोरो में और भी प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास इन समरसेट काउंटी, $1.1 million, $1.2 million, $1.35 million। तो मेरे पास हर बंदे के लिए घर है। आप हिम्मत करिए, अपना फोन उठाइए, कॉल करिए 201-600-1910, 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ, यू कैन लीव वॉइस मेल, आपको मैं दूसरे दिन या तो सेम डे आपको जरूर कॉल करूंगा, आपके घर पे आऊंगा, आपसे मिलेंगे, आपको घर दिखाएंगे और आप थक जाएंगे मगर आदर्श लाल थकने वाला नहीं है जब तक आपको घर नहीं दिलाता।
0: खूब आदर जी, देखिए दोस्तों जितनी भी आपकी हिचकिचाहट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए इस कॉल के बाद, इस बातचीत के बाद, क्योंकि आदर्श जी हमारी मदद के लिए हर दूसरे थर्सडे यहाँ पर इस शो में आते हैं और आपसे और हमसे बहुत सारी बातचीत करते हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी लिस्टिंग बताते हैं। फिर चाहे आपकी बड़ी फैमिली हो, छोटी फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो, इतने सारे लिस्टिंग, इतने सारे ऑप्शन शायद ही कहीं मिलते होंगे, तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, कॉल कीजिए 201-600-1910 है आदर्श जी का नंबर, आप मैसेज कर सकते हो, वॉइसमेल भेज सकते हो और आदर्श जी हमारी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। फिलहाल हमारी बातचीत आदर्श जी के साथ जारी रहेंगी क्योंकि ना सिर्फ प्रॉपर्टीज बल्कि रियल एस्टेट की जितने भी सवाल है वो तो हमें आदर्श जी बताते ही है, उसी के साथ अगर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है वो भी हमें आदर जी बताएंगे। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
3: Swag, style और non-stop dancing के लिए तैयार हो जाओ.
2: Add it, turn it up and don't sit now. Just go wow.
3: Wow!
4: Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: गुड इवनिंग न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की गुरुवार की इस खूबसूरत शाम में। देखिए वेदर तो ऊपर नीचे चलता रहता है न्यू जर्सी का, लेकिन हमारा जो ये शो है दूसरे थर्सडे, यहाँ पर आते हैं हमारे रियल एस्टेट के किंग, हमारे एक्सपर्ट रियल्टर और नेगोशिएटर आदर्श लाल जी इन अ वेरी स्पेशल शो रियल एस्टेट की बात डील मेकर आदर्श लाल जी के साथ। वैसे दोस्तों आदर्श जी के बारे में आप सबको तो पता ही है, रियल एस्टेट की जितने भी सारे बातचीत यहाँ पर इस शो में होती है, इतने सारे लोग हैं जो उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें उनसे सलाह लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही खास बात है आदर्श जी के बारे में जो मैं नॉर्मली नहीं एक शेर के साथ सुनाना चाहूंगी, उसी के साथ स्वागत करते हैं आदर्श जी का। तो दोस्तों देखिए, घर बेचना या खरीदना है तो सही राय जरूरी है, घर बेचना या खरीदना है तो सही राय जरूरी है। आदर्श जी को अगर घर बुलाना है तो दोस्तों चाय जरूरी है। इसी के साथ स्वागत है फिर एक बार आदर्श जी, नमस्ते।
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बड़ी अच्छी हाँ जी।
0: दोस्तों देखिए, जिन्हें भी नहीं पता या भूल गए होंगे, याद रखिए अगर आदर्श जी को घर बुलाना है, आदर्श जी से सलाह लेनी है, तो चाय बिल्कुल भी जरूरी है। मेक श्योर कि आप चाय की पहले रेडी रखना आदर्श जी के लिए, तो बेस्ट सलाह आपको मिल ही जाएगी। उसी के साथ साथ आदर्श जी, आज हमने बहुत सारी बातें रियल एस्टेट से रिलेटेड की है, लेकिन उसी के साथ साथ न्यू जर्सी में बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी है, बिजनेसमैन है जिनको बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में इंटरेस्ट है, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या लिस्टिंग्स है बिजनेसेस के, वो भी हमें बताइए।
1: बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका कि देखिए आदर्श लाल, मतलब खाली घर नहीं, खाली घर में बेचता नहीं हूँ, घर दिलाता खाली नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम हमारे मेरे पास काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं फॉर सेल, लिकर्स स्टोर एक नहीं, मेरे पास कहीं लिकर्स स्टोर्स हैं, नॉट ओनली इन न्यू जर्सी, ऑल ओवर सब जगह पे हैं, और मेरे पास सुपर मार्केट्स हैं, मेरे पास स्मोक शॉप है, एक नई स्मोक शॉप आई मेरे पास इन पर्थ हैम्बोय इन मिडिलसेक्स काउंटी, ओनली फॉर $100,000 $100,000 रनिंग बिजनेस, इन उसके अंदर कुछ $25,000 की इन्वेंट्री है, दैट इज इंक्लूडेड इन $100,000 लो रेंट, ओनली $2,500 रेंट। अगर कोई भी भाई मेरा बहन जो अभी जैसे जॉब कर रहे हैं और उनको थक गए हैं, उनको कोई बिजनेस चाहिए, तो दिस इज परफेक्ट फर्स्ट टाइम बायर के लिए, बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप खुद काम करते हैं इस स्टोर पे, तो यू कैन मेक मोर देन $10,000 अ मंथ आफ्टर एक्सपेंसेस, तो काफी अच्छा है। मैं दोबारा बताता हूँ, दिस इज इन पर्थ एम्बॉय, आस्किंग प्राइस, दिस इज अ स्मोक शॉप विद विद अ गिफ्ट आइटम्स, रनिंग बिजनेस है, और उसकी जो इनकम है अगर आप खुद चलाते हैं, तो यू कैन मेक $10,000 अ मंथ, आस्किंग प्राइस इज ओनली $100,000 इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, और इज वेरी मोटिवेटेड सेलर है, दिस इज इन पर्थ हैम्बॉय। और मेरे पास एक लिकर स्टोर है, दिस इज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, अगर आपको दूर जा सकते हैं, आस्किंग प्राइस इज $450,000, और उसके अंदर $150,000 का इन्वेंट्री इंक्लूडेड है उसके अंदर, मतलब जो सामान है जो, दैट इज इंक्लूडिंग द प्राइस, एंड ऑल्सो वेरी मोटिवेटेड सेलर, उसका रेंट इज ऑनली $2,000, एंड द स्टोर इज ऑल्सो करंटली मेकिंग लाइक नेट इनकम ऑफ ओवर $120,000। तो ये हुआ, और मेरे पास काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, आई हैव रेस्टोरेंट्स फॉर सेल, आई हैव होटल्स फॉर सेल, आई हैव सुपर मार्केट्स फॉर सेल, ग्रोसरी स्टोर, आपको जो चाहिए, अगर आपको कुछ खरीदना है, आपको कुछ अपने बिजनेस, कई बार मैं देखता हूँ मुझे कई बार लोगों के कॉल आते हैं, उनका जैसे रेस्टोरेंट है वो बिक मतलब चल नहीं रहा है, परेशान है या तकलीफ है, एंड दे वांट टू बी आउट ऑफ दैट बिजनेस, सो आई कैन सेल योर बिजनेस, आपका जो भी चला हुआ बिजनेस है अगर आपको निकलना है, तो या तो आपको और बिजनेस खरीदने हैं, और रेस्टोरेंट बनाने हैं, और सुपर मार्केट बनानी है, तो मेरे पास सब चीज़ें हैं, मेरे पास डे केयर है, डे केयर सेंटर है न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क में। तो आपको क्या करना होगा, पहले मेरे से बात करनी होगी, और कोई भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए NDA साइन करना होगा, तो आप कॉल करिए, हिम्मत करिए, और यू नो मैं तो हूँ ही आपके साथ, आपको घर लेना है, आपको आप हरकत करिए, हरकत में बरकत है। जी हाँ,
0: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर खास रियल एस्टेट की तो बात होती ही है, उसी के अगर आपको बिजनेसेस या फिर आपका जो खुद का बिजनेस है अगर आपको सेल करना है उसके बारे में भी बातें होती है, तो बिल्कुल भी झिझक मत कीजिए। आदर्श जी को कॉल कीजिए 201-600-1910, 201-600-1910 आदर्श जी का नंबर है। और हर दूसरे गुरुवार यहाँ पर हमारी बातचीत आदर्श जी के साथ जारी रहेंगी। फिर चाहे आपको प्रॉपर्टी बाय करना हो, सेल करना हो, रेंट करना हो, बिजनेसेस बाय करना हो, सेल करना हो, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट रियल्टर और नेगोशिएटर है आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। उसी के साथ ही अगला गाना आदर्श जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शाम शानदार बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों थ्रो बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी सी एक रील मोमेंट में मिलते हैं। कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La fiat va la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं खुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका फिर एक बार थर्सडे की शाम में, जहां हमने इतनी सारी बातें की रियल एस्टेट एजेंट आदर्श लाल जी के साथ। लेकिन एक बात जो हमें समझ आई है कि एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होने के साथ साथ एक अच्छी मॉर्गेज कंपनी भी होनी चाहिए जो आपको सही टाइम पर प्री अप्रूवल दे। और बस इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो हमारे दोस्त बीश आपके उन सारे सवालों के जवाब आपको देने अभी आ रहे हैं राइट हियर ऑन मिर्ची। ओवर टू यू बीश।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पर होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अब इसे कहते हैं ना सही मायने में शुभारंभ। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपको याद है कि बचपन में मम्मी कोई भी नए काम के लिए जाना हो तो दही चीनी खाए बगैर जाने ही नहीं देती थी, और आइडियली बस शगुन के लिए एक चम्मच दही काफी होता था। लेकिन घर पे बना मलाईदार दही का स्वाद इतना खूब होता था कि हम बच्चे एक कटोरी दही खा जाते थे। और यही रिचुअल यहाँ US में भी जारी है। फर्क इतना है कि अब ये रिचुअल दीप फूड के फार्म फ्रेश दही के साथ होता है। दीप फूड्स दही ना सिर्फ हार्मोन फ्री है बल्कि असली होम स्टाइल दही का स्वाद देता है। तो अभी भी एक चम्मच दही के बदले एक कटोरी दही खाने की आदत बरकरार है। और अगर आप भी किसी भी नए काम की शुरुआत दही चीनी खाकर करते हैं तो ज़रूर ले आइए दीप फूड्स फार्म फ्रेश दही, क्योंकि अच्छी आदतें कभी बदलनी नहीं चाहिए। जैसे कि मिर्ची पे ये हॉट सा गाना सुनने की आदत। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Milchi, burka. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे में। दोस्तों देखिए, गोल्डन आवर शुरू है और गोल्डन आवर में आपको तो पता ही है कि हम बातें करते हैं कि आज का जो गोल्ड रेट क्या है उसके बारे में विद आवर गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। लेकिन आज उनके लिए बहुत ही खास सवाल है, थ्रो बैक थर्सडे स्पेशल सवाल है, तो चलिए उनका पहले तो स्वागत करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम में। नमस्ते बॉबी जी, वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल इवनिंग।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। दोस्तों आप सबको भी ए ब्यूटीफुल हैप्पी इवनिंग। और देखिए, आप जैसे थ्रोबैक थर्सडे बोलती है ना, मैं आप हमारी गुरु है, गुरु की तरह आप लोगों को नॉलेज देती है, तो मैं इसे गुरुवार बोलूंगा, गुरु का शुक्रवार। और हैप्पी थर्सडे। आज गोल्ड के प्राइस 4650 4650 पड़ रहे हैं, कल से $50 गोल्ड का प्राइस नीचे है। हालांकि जब इंडिया में सोने के भाव की ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका में आज गोल्ड की मार्केट ने डिप लिया है, $4,650 पर

0: खूबसूरत सवाल के लिए।
1: तो थैंक यू बॉबी जी, पहले तो आपने जो गोल्ड रेट है, नॉट जस्ट गोल्ड बट सिल्वर रेट भी हमें बताए, और आज थ्रोबैक थर्सडे है और हर थ्रोबैक थर्सडे के दिन हम पुरानी यादों को यू नो संजोते हैं, यहाँ पर पुराने जो गाने हैं उनको याद करते हैं, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कभी ना पुराने होते ही नहीं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते रहते हैं। तो वैसा ही सवाल आपके लिए है कि क्या ज्वेलरी में भी कोई ऐसे टाइमलेस ज्वेलरी पीसेस है जो इतने सारे ट्रेंड्स बदलने के बाद भी उनका वैल्यू और उनका चार्म अभी भी उतना ही इंटैक्ट है?
0: देखिए ज्वेलरी की अगर बात करें ना, तो पुराने जमाने के फैशन को ही आज की डेट में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आप पुराने, आपने सुना है ना पुराना गाना भी था, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रही,
1: बिल्कुल।
0: तो जो झुमका है, जो परदादी थी, दादी थी, नानी थी, सब झुमके पहनते आए हैं, सिर्फ झुमकों का स्टाइल, थोड़ा सा वजन, बिकॉज पहले थोड़ी भारी बनती थी, आजकल की लड़कियां थोड़ी सी लाइटर एंड मॉडर्न टोन में पहनती हैं। उसके अलावा पायल ले लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिद्धि जी, वो खूबसूरत सा प्यारा सा मंगलसूत्र जो शायद आपकी नानी ने, मेरी नानी ने भी पहना होगा, और आपने भी शादी के दिन जरूर पहना होगा। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइमलेस पीस है जो हमेशा आने वाली जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। हो सकता है पुराने जमाने की अगर मराठी स्टाइल की वाटी की बात की जाए तो वो प्लेन गोल्ड की वाटी होती थी, अभी नए जमाने में वो सिंपल सॉलिटेयर के रूप में वाटी का पेंडेंट बनाया जाता है। सो थोड़ी सी लुक चेंज हुई है, लेकिन नाम वही है, प्रथा वही है, रिचुअल वही है, और पहनने की सिस्टम भी वही है। सो चाहे मंगलसूत्र हो, झुमके हो, पायल हो, पुराने चंदन हार हो, ऐसे कितने हजारों क्लासिकल पीसेस हैं जो आज भी नए डिजाइन के तौर में पहने जाते हैं, स्पेशली कुंदन और पोलकी की ज्वेलरी, पोलकी डायमंड, विच इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ, बिकॉज जो बड़े बड़े डिजाइनर हाउसेज हैं जिनके साथ आप लहंगे मैच करके लेते हैं, सो आज की ट्रेंड में यंग लड़कियां पोलकी की डायमंड ज्वेलरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो हजारों साल से नवाबों तक से चली आ रही है। तो आप राजमहल आइए, पोलकी हो चाहे डायमंड ज्वेलरी हो, गोल्ड ज्वेलरी हो, राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें बहुत सही तरीके से, ये जानते हुए जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमने कल किया सिद्धि जी, कि सोने के जो भाव हैं इंडिया से अमेरिका में आज भी 15% चीपर है। इंडियन गवर्नमेंट के जो डिसीजन टू रिक्वेस्ट स्टॉप बाइंग गोल्ड फॉर अ ईयर, दे इंपोज कस्टम ड्यूटीज ऑफ 15%। सो हिंदुस्तान में सोने के भाव अमेरिका से 15% ज्यादा है, अमेरिका में गोल्ड सस्ता है। हम जब सब शादी होती है तो इंडिया जाते हैं, हमें लगता है कि इंडिया से शायद हम सस्ता ले आएंगे, आपके मन की ये भावना गलत है। आप राज ज्वेल्स आइए, हम आपको गोल्ड के प्राइस के डिफरेंस का एजुकेट करेंगे, आपको नए डिजाइन, नए मॉडर्न के फैशन के गहने, चाहे आप गुजराती स्टाइल हो, चाहे पंजाबी स्टाइल हो, बंगाली हो, मराठी हो, साउथ इंड की वडियानम हो, जड़ा हो, राज ज्वेल्स के पास हर तरह की ज्वेलरी है, और अगर नहीं तो वी कैन कस्टमाइज एनीथिंग फॉर यू, ताकि आप गोल्ड के प्राइसेस का यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स की टीम के साथ बेनिफिट ले सके।
1: क्या बात है बॉबी जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया में डिजाइन वैरायटी ज्यादा है, तो एक बार राज ज्वेल का पेज जरूर चेकआउट कीजिए, राजज्वेल्स.com पे जाके या फिर उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर, इतने अमेजिंग ट्रेडिशनल येट एलिगेंट एंड क्लासिक डिजाइन भी आपको मिल जाएंगे, इतनी ज्यादा वैरायटी, और कस्टमाइजेशन के बारे में बॉबी जी हमें पहले भी बता ही चुके हैं और आगे भी बताते रहेंगे। तो आज ही विजिट कीजिए राजज्वेल्स.com, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों बॉलीवुड में कमबैक का चार्म अलग ही होता है। श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जब भी कोई एक्टर ब्रेक के बाद वापस आता है ना, तो ऑडियंस का रिएक्शन इमोशनल भी होता है और क्यूरियस भी, क्योंकि उस एक्टर के साथ मेमोरीज जुड़ी होती है। और जब वो वापस स्ट्रांग रोल में आता है ना, तो यार वो सिर्फ एक कमबैक ही नहीं, एक मोमेंट बन जाता है। और ऐसे फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को इतने सालों बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पर देखने का चार्म ही अलग होता है। वैसे आजकल ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो OTT पे आए। तो यार बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे उनका ट्रांजिशन देखना और बहुत सालों पहले जो उन्होंने हीरो के रोल किए थे वो चेंज होकर अब वो एक एक्टर या कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, ये देखना भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप भी मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कमबैक है एक बड़े एक्टर का जो आपको बहुत पसंद आया। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, बॉलीवुड का ना एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, थिएटर्स वापस फुल हो रहे हैं, पर ऑडियंस बदल चुकी है। अब लोग हर फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं जाते, सिर्फ उन फिल्म्स के लिए जाते हैं जो एक्सपीरियंस देती है। जैसे जब कोई बिग स्केल एक्शन या विजुअल स्पेक्टेकल आता है ना, तब लोग बोलते हैं कि यार इस मूवी को तो थिएटर में ही देखना चाहिए। लेकिन बाकी कॉन्टेंट OTT पे इक्वली स्ट्रांग चल रहा है। मतलब बॉलीवुड अब दो ट्रैक्स पर चल रहा है, इवेंट सिनेमा और इंटीमेट स्टोरी टेलिंग। तो आप भी बताओ दोस्तों कि आप थिएटर जाने के लिए क्या चूज करते हो, स्टोरी या स्केल? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ ऐसे एल्बम्स जो आज भी सुपर हिट है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे एल्बम्स बने हैं जिसमें यार एक से एक गाना एक से बढ़कर एक है। मतलब एक 2008 में जो एल्बम आई थी जाने तू या जाने ना मूवी जो बनी थी, उसका हर एक गाना वंडरफुल ही था। कंपोजर AR रहमान का ऑब्वियसली कंपोज्ड म्यूजिक था, तो हर एक गाना एक से बढ़कर एक होना ही चाहिए था। लेकिन जनरली AR रहमान के जो गाने होते हैं वो बहुत ही यू नो माइल्ड टोन, अमेजिंग, सूदिंग टू हियर होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जाने तू या जाने ना का म्यूजिक बनाया था, दैट वॉज Entirely a Gen Z theme। जी हाँ, पप्पू गान डांस वाला वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम जाने तो या जाने ना एल्बम, जो कि यार तभी ऑलरेडी Gen Z एंथम बन गया था, बिफोर Gen Z वॉज इवन अ टर्म। जी हाँ, मतलब ये जो एक गाना है वो इंस्पायर्ड था बाय एवरी गर्ल्स अनोइंग क्यूट क्रश, जो कि एकदम परफेक्ट था। मतलब मस्क्यूलर था, पॉपुलर था, बस उसको नाचना नहीं आता था। और एक्चुअली ना पप्पू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्ची में रियल लाइफ बॉलीवुड पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे जरूर बताइए कि बॉलीवुड में पप्पू जैसा कैरेक्टर कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग सा गाना पप्पू कांट डांस फ्रॉम जाने तो या जाने ना का एल्बम, जो 2008 में बनी थी, जिसके सिंगर है बेनी दयाल और सतीश सुब्रमण्यम, कंपोजर है AR रहमान। और हाँ यार, ब्लेजी का वो रैप हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे वो जो रैप था वो एक रात पहले ही बनाया गया था, बिफोर द फाइनल मिक्स। तो चलिए सुनते हैं दिस एवरग्रीन सॉन्ग पप्पू कांट डांस वाला, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो,
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रहा है?
2: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: कुछ ऐसे एल्बम्स जिनके गाने एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2008 के एल्बम की, जाने तू या जाने ना, जिसको कंपोज किया गया है AR रहमान ने। और दोस्तों इसके हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, और पप्पू गान डांस साला तो हमारा फेवरेट है ही, बट अनदर सॉन्ग, अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम इज नजरें मिलाना नजरें चुराना। जी हाँ, सिंगर्स AR रहमान, बनी दयाल, सतीश सुब्रमण्यम, अगेन कंपोज बाय AR रहमान। ये जो गाना बनाया था ना, वो बनाया गया था टू मिरर जेन वाई रिलेशनशिप, मतलब कंफ्यूजिंग, क्यूट से, कॉम्प्लिकेटेड से, और इस तरह से फिल्माया गया इस गाने को कि बस कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस वाइब्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि चलो सारे दोस्त एक साथ गए हैं, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, और एक साथ जब हम सारे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रिप पर मिलते हैं, हाउस पार्टी में मिलते हैं, तो एक माहौल जो बन जाता है और गाने गाने का जो मन करता है ना, बस वही माहौल इस गाने ने बनाया था। और शायद इसीलिए काफी बार जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये गाना जरूर सुनते हैं, नजरें मिलाना नजरें चुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जाने तू या जाने ना एल्बम, राइट फॉर यू हियर ओनली ऑन मिर्ची। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनदर एवरग्रीन एल्बम जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए नजरें मिलाना नजरें चुराना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: One more remix.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: कुछ ऐसे एल्बम्स जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है कुछ ऐसे एल्बम्स के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। तो आज 2008 के जाने तो या जाने ना के बारे में बात हो रही है, जिसमें यार इतने सारे गाने हैं और हर एक गाना उतना ही एवरग्रीन है। कंपोज बाय AR रहमान, और इस एल्बम के हमने पप्पू कान डांस साला, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, इन गानों के बारे में तो बात की ही है, बट एक ऐसा गाना है जिसके वजह से अदिति नाम की लड़की फेमस हो गई। जी हाँ, कभी कभी अदिति संग बाय राशिद अली। दोस्तों यार, ये वो गाना है ना कि अपनी जो दोस्त है अदिति, अगर आपके भी कोई दोस्त है अदिति, तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपने कभी उसको ये गाना डेडिकेट नहीं किया है। जी हाँ, अदिति रूठ जाए, अदिति सैड हो जाए, तो बस कभी कभी अदिति बजा दिया जाए। वैसे तो यार, ये जब गाना बनाया गया था तब राशिद अली कंप्लीटली नए थे। वो बस एक लंडन गिटारिस्ट थे जो रहमान जी के साथ जैम किया करते थे। लेकिन तब AR रहमान ने डिसाइड किया कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये गाना एक यूथफुल ट्रैक है, उनकी आवाज बहुत ही अमेजिंग लगेगी, एक फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तो या जाने ना। वैसे दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स है जो आपको पसंद है, जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है। उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए, जाने तू या जाने ना का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।